फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में

0: इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
2: अगर हम यह कहें कि मानव जीवन में संगीत का महत्व अकथनीय है तो यह अर्ध सत्य से भी ज्यादा अधूरा कथन होगा, क्योंकि संगीत का असर मनुष्य के समान ही अन्य जीवों पर भी देखा गया है। यदि पौराणिक कथा समझकर इस बात पर विश्वास न करें कि श्री कृष्ण की मुरली की टेर सुनकर सारे मवेशी उनके पास इकट्ठे हो जाते थे, तो हमें यह बात मानने में भी अवश्य झिझक होगी कि संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गायन से जंगल के हिरण उनके करीब आ जाते थे, या पत्थर पिघल जाते थे, या दीपक जल जाते थे, या मेघ बरसने लगते थे। तानसेन और बैजू की कथा प्रागैतिहासिक नहीं बल्कि सिर्फ 4 सदी पुरानी है। ये चमत्कार अभी भी संभव है। काश संगीतकार श्री कृष्ण की तरह अवतार या तानसेन और बैजू की तरह साधक होते। पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के माध्यम से प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधों पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है। अच्छे संगीत से पेड़ पौधे स्वस्थ और शीघ्र बड़े होते हैं। हाल के वर्षों में तमिलनाडु के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि अच्छे संगीत के प्रभाव से गाय ज़्यादा दूध देती है। पिछले दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला है कि अच्छे संगीत से शिशुओं की मानसिक कोशिकाएं ज़्यादा स्वस्थ होती हैं और वे ज़्यादा कुशाग्र होते हैं। नहीं है कि किस प्रकार का संगीत है, मुख्य बात यह है कि संगीत अच्छा होना चाहिए। की पहचान करने वाले ही तो गुणीजन कहलाते हैं। अच्छा संगीत हमेशा मधुर होता है। मन पर संगीत के प्रभाव को देखते हुए लोग इसे जिंदा जादू भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने तो अनेक चिकित्सा पद्धतियों की तरह संगीतिक चिकित्सा पद्धति विकसित कर ली है, जिसके लोमहर्षक परिणाम सामने आए हैं। संकुचित भाषा में संगीत का अभिप्राय गायन वादन और नृत्य से ही लिया जाता है। जिन्हें गायन वादन या नृत्य नहीं आता है या इनमें जिनकी रुचि नहीं है, वे शायद भूलवश यह समझते हैं कि संगीत से उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम संगीत को वृहद अर्थ में समझें तो पाएंगे कि संगीत तो एक दैवी शक्ति है जो सृष्टि के रोम रोम में बसी है। संगीत तो एक ऐसी दिव्य ध्वनि और गति है जो पूरी प्रकृति को संचालित करती है। संगीत के बिना तो प्रकृति के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति के प्राण रूपी इस संगीत को सुनना हो तो किसी समुद्र तट पर खड़े हो जाइए और सुनिए शून्य से उठती हुई उस अलौकिक वेगमयी ध्वनि को जो आपको अंतस तक सिहरा देगी। सुनना हो अनुपम संगीत तो हिमालय की वादियों में देवदार के घने जंगलों में चुपचाप खड़े हो जाइए और सुनिए देवदार की पत्तियों से छनकर निकलने वाली उस मनोहारी ध्वनि को जो आपको अवश्य रोमांचित कर देगी। शब्द अंधेरी रातों में कीट पतंगों की मिश्रित आवाजों से निर्मित ध्वनि को सुनिए तो आपको अवश्य प्रकृति की अनंतता का आभास होगा। आपको अपने शरीर के अंदर के संगीत को सुनना हो तो अपने दोनों कानों को जोर से दबाकर एकाग्र होकर बैठ जाइए। आप अपने आंतरिक प्राकृतिक स्वर

0: और लय को स्पष्टतः सुन पाएंगे। जिस क्षण आपका वह संगीत बंद हो जाएगा, उसी क्षण आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इन्हीं कारणों से संगीत के मर्म को समझने वाले गुणीजन संगीत को सहज समाधि, सहज योग कहते हैं। वे परमेश्वर से संबंध जोड़ने का सबसे आसान तरीका, सर्वाधिक सुलभ माध्यम संगीत को ही समझते हैं। सच्चाई यह है कि संगीत स्वयं परमेश्वर है। गीता में परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं स्वतः संगीत हूँ। वेद नाम साम वेदोस्मी, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद संगीत की परिभाषा भी है और व्याख्या भी। गीता भोगवादी संस्कृति और कलयुगी व्यवस्था की लीला है कि संगीत को सस्ते मनोरंजन, जीविकोपार्जन के माध्यम तथा सामान्य व्यवसाय की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। यह भीषण त्रासदी है कि इस प्राणदायक अमृत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों ने ध्वनि प्रदूषण का सशक्त वाहन बना दिया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए भजनों को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए भजनों को।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए भजनों को, और इसी के साथ संपन्न होता है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। एफएम बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा।
1: भाइयों नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी फसल कोई भी हो जिसमें उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है फसल के उत्पादन के लिए, तो आज हम आप लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने जो आप लोग क्रय करते हो बाजार से, जो उर्वरकों का क्रय कर रहे हैं, उस उर्वरकों का नकली है या असली है, उसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जो बहुत उर्वरक उपयोग होने वाला है यूरिया, तो यूरिया में हमको क्या करना है, जो दाने रहते हैं उसको पानी में अच्छी तरह से घोलना, और पानी में घोल करके हम उसमें हाथ की उंगली डाल करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो पानी पहले था उससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसका तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से सही रूप से पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो असली यूरिया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा आपको तरीका बताएं यूरिया की पहचान करने का कि असली यूरिया का पहचान क्या है, तो इसको हम तवे पर गर्म करेंगे, और तवे पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाएगा, पानी बनेगा, और पानी के बाद एक गैस फॉर्म के रूप में बन करके उड़ जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नीम लेपित यूरिया चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष उसी का बचेगा, बाकी यूरिया पूरा उड़ जाएगा गैस बनाकर। ठीक इसी प्रकार से हमारा और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी, इसको हम डायमोनियम फास्फेट बोलते हैं। डीएपी में हमारे जो किसान लोग हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का डीएपी के माध्यम से पूर्ति करते हैं। ये हमारे कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी। इसका चूंकि कीमत भी ज्यादा रहता है इसलिए इसमें मिलावट का आशंका सबसे ज्यादा बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे पहला तरीका ये है कि हम जो डीएपी है उसके कुछ दानों को लेकर के और उसमें खाने वाला चूना मिलाएंगे और उसको हम रगड़ेंगे। उसको जब हम रगड़ते हैं दोनों को तो इसमें से बहुत तीव्र गंध निकलता है, वो गंध इतना तीव्र रहता है कि उसको हम सूंघ नहीं सकते। तो इस प्रकार यदि गंध आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमारा डीएपी असली है, उर्वरक सही है। इसी प्रकार से इसका जो उर्वरक का डीएपी का जो दूसरा तरीका चेक करके, तो इसमें हम क्या करते हैं डीएपी के कुछ दानों को लेकर के हम तवे पर गर्म करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है फूलने लगता है, उसमें इसके दाने फूलने लगते हैं, और यदि दाने इसमें फूलते हैं हम देखेंगे तो हमारा डीएपी असली है, सही है हमारा डीएपी। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं, जिसको हम पोटाश की जो तत्व रहता है उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके हम देखेंगे पोटाश में इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट की संभावना रहती है और हम पहचान भी आसानी से नहीं कर सकते। ये इस तरीके से रहता है, यदि हम इसमें जो हमारी लाल ईंट रहती है उसको यदि कोई पीस करके भी मिला दें तो हम सामान्य रूप से इसका पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो पहचान करने का तरीका है, पहला तरीका ये है कि इसमें जो दोनों तरह के कण रहते हैं लाल और सफ़ेद, इनको यदि हम हल्का सा पानी डाल के मिलाएंगे और हम मिला करके दोनों को रगड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों के कण आपस में नहीं मिलते हैं, लाल कण अलग ही रहेंगे और सफ़ेद कण अलग से रहेंगे। तो इसका ये तरीका है कि दोनों कण आपस में नहीं चिपकेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं यदि कण आपस में नहीं चिपक रहे हैं तो हमारा जो एमओपी है वो असली है। ठीक इसका दूसरा तरीका है, इसको पानी में घोलने से इसको जो लाल कण है वो ऊपर में रहते हैं और जो सफ़ेद कण है वो नीचे पानी में रहते हैं। इसको हम बहुत देर तक भी घोलेंगे यदि चम्मच के माध्यम से तो भी आसानी से नहीं घोलता, और जो लाल कण है वो ऊपर आते जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो पोटाश है और सही है, असली है। इसी प्रकार एक और पोषक उर्वरक रहता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे SSP बोलते हैं, मात्र राखड़ भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसके परीक्षण के लिए, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यूरिया का जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो इसके दाने नहीं फूलते हैं। यदि दाने नहीं फूल रहे तो हम समझेंगे कि हमारा उर्वरक सही है, असली है।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, जिस

में चर्चा का विषय था रासायनिक उर्वरकों की पहचान कृषक कैसे करें। वार्ताकार थे उदित नारायण नगाइच, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तमनार। इसी के साथ कृषि चर्चा अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रामचरित मानस गान, 6:40 पर। देश गान होगा 6:50 पर। संस्कृत समाचार 6:55 पर। 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। झरोखा कार्यक्रम का वक्त होगा 7:35 पर। गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:45 पर। कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप पुनः प्राप्त कर सकेंगे 7:55 पर एवं 10 बजे। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए का वक्त होगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे 11 बजे और पुनः 12 बजे। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से एवं पुनः आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 11:55 पर। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:10 पर होगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ये समाचार अनुप्रसारित किया जाएगा। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। आज की नसीहत में आप सुनेंगे पशुओं की सही उपयोगिता के लिए टीकाकरण। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। 11 बजे हिंदी में समाचार एवं 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। इसी के साथ रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। इसी के साथ देशगान अब समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वालोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति

0: विंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट

0: टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं, सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सुरों के खूबसूरत सफर में आइए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ, और सुनते हैं फिल्म क्रिमिनल का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना क्रिमिनल फिल्म का गीत जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदीवर के बोल थे एमएम करीम का संगीत था।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनिए विरासत फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और चित्रा ने। जावेद अख्तर ने गीत की शब्द रचना की है, अनुमलिक का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं और इस सुरीले सफर में आगे चलते हैं और सुनते हैं फिल्म दाग द फायर का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, राजेश रोशन का संगीत है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

अभी आपने सुना तेरे नाम फिल्म का गीत, जिसे गाया था उदित नारायण ने, समीर के बोल थे हिमेश रेशमिया का, संगीत था और इसी के साथ चित्रपट

संगीत का ये खूबसूरत सुरों का सफ़र यहीं थमता है और इसके साथ संपन्न होता है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।

मिट्टी की सौंधी खुशबू, कल कल बहती नदियाँ, लहराते वन और चहचहाते पंछी, यही तो धरती का श्रृंगार है। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी रेडियो मित्र डिडनेश्वरी यादव। श्रोता मित्रों, धरती जिसने हमें हवा दी, पानी दिया, अन्न दिया और जीवन का हर रंग दिया, जिंदगी दी, वही धरती आज प्रदूषण की मार झेल रही है। मित्रों, जब प्रकृति मुस्कुराती है तभी जीवन खिलखिलाता है। आज प्रकृति खुद की रक्षा के लिए हमें पुकार रही है। यह पुकार केवल पेड़ों की सरसराहट में नहीं बल्कि सूखती नदियों, दम तोड़ती झीलों, कूड़े से भरे जंगलों और प्लास्टिक निगलते बेजुबान पशुओं की खामोश चीख में भी सुनाई देती है। साथियों, प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया, लेकिन सुविधा की यह आदत आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिस प्लास्टिक की थैली या बोतल का उपयोग हम कुछ ही मिनटों के लिए करते हैं, वह वर्षों तक धरती पर बोझ बनी रहती है। यह मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है, जल स्रोतों को प्रदूषित करती है और धीरे धीरे छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे खाने और पानी तक पहुंच रही है। दोस्तों, बारिश जब होती है तो नालियों में पहले से प्लास्टिक कचरा जमा होने के कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है और किसी भी पर्यटन स्थल की खूबसूरती आज प्लास्टिक के कारण प्रभावित हुई है। हम जहाँ भी देखें वहाँ प्लास्टिक का ढेर दिखाई देता है। जंगल हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, झील हो, तालाब हो, डैम हो, समुद्र हो, कोई भी जगह आज प्लास्टिक से नहीं बची है। दोस्तों, आज बेजुबान पशु प्लास्टिक को खाना समझ निकल जाते हैं, जो उनके लिए बेहद घातक है। वे इसे असमय ही काल के ग्रास में समा जाते हैं या लंबे समय तक शारीरिक कष्ट झेलते हैं। यह दृश्य हमारी धरती माँ की पीड़ा को और गहरा कर देता है। हमारी धरती माता जिसने हमें बिना स्वार्थ के जीवन का हर उपहार दिया है, हम उसे केवल कष्ट ही दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकलें तो कपड़े या जूट का थैला साथ रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह स्टील, कांच या अन्य टिकाऊ चीज़ों का उपयोग करें। सार्वजनिक एवं पर्यटन स्थल पर, प्राकृतिक स्थलों एवं यात्रा के समय कई यात्री स्टेशन पर या चलती ट्रेन से प्लास्टिक का कचरा फेंक देते हैं। ऐसा न करें दोस्तों, प्लास्टिक का कचरा डस्टबिन में ही डालें एवं घर का कचरा बाहर न फेंकें। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वालों को ही कचरा दें। अपने परिवार एवं बच्चों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रयास करें दोस्तों कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो। दोस्तों, धरती केवल हमारी विरासत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है। यदि आज हम इसे प्लास्टिक के बोझ से मुक्त नहीं करेंगे तो ये हम पर ही बोझ बन जाएगा, क्योंकि धरती जब प्रदूषण से मुक्त होगी तभी जीवन फलेगा फूलेगा। और हम सबको मिलकर स्वच्छता को अपनाकर प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है, क्योंकि धरती की सुनो पुकार, प्लास्टिक मुक्त हो संसार। अब चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अब झरोखा से डिडनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में आज प्रस्तुत हैं प्रार्थना की महत्ता पर बापू के विचार।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रार्थना में दिलचस्पी न होने का एक कारण व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता का अज्ञान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रार्थना से ही सामाजिक प्रार्थना की व्यवस्था हुई है। व्यक्ति को प्रार्थना की भूख न हो तो समाज को क्यों कर हो सकती है। सामाजिक प्रार्थना का उपयोग भी व्यक्ति के लाभ के लिए है। व्यक्ति के आत्मदर्शन में, आत्मशुद्धि में सामाजिक प्रार्थना सहायक होती है। अतएव यह आवश्यक है कि सब कोई व्यक्तिगत प्रार्थना के महत्व को पहचान ले। जहाँ बच्चा समझने लायक होता है वहाँ माता तुरंत ही उसे प्रार्थना सिखाती है। सारे धर्मों के लिए यह सामान्य वस्तु है। इस प्रार्थना के लिए दो समय स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, अर्थात सवेरे उठते समय उस अंतर्यामी को याद किया जाए और रात को सोते समय उसका ध्यान किया जाए। इस बीच जागृत स्त्री पुरुष अपने प्रत्येक क्रिया को करते समय अंतर्यामी को याद करेंगे, उसे साक्षी रूप मानेंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति से बुरा कृत्य तो हो ही नहीं सकता और अंत में उसको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वह अपने प्रत्येक विचार का साक्षी ईश्वर को मानेगा, उसे स्वामी बनाएगा। यह शून्यवत होने की स्थिति हुई। इस तरह जिसके समक्ष सारा समय ईश्वर विद्यमान रहता है उसके हृदय में राम वास करता है। ऐसी प्रार्थना के लिए खास मंत्र अथवा भजन की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रत्येक क्रिया के आरंभ और अंत के लिए मंत्रों का विधान किया गया है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। हमें तो चाहे किसी भी नाम से, किसी भी तरह, चाहे किसी भी स्थिति में ईश्वर को याद करना है। ऐसा करने की आदत बहुत कम लोगों की पड़ती है। यदि बहुतों को ऐसी आदत हो तो जगत में पाप कम हो जाए, मलिनता क्षीण हो जाए और पारस्परिक व्यवहार शुद्ध हो जाए। ऐसी शुभ स्थिति को प्राप्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को, जैसा कि मैंने कहा है, दो समय तो निर्धारित करने ही चाहिए और उसे इसके लिए अन्य समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए और उसमें नित्य इजाफा करते जाना चाहिए, जिससे कि अंत में हर सांस में राम का नाम निकलने लगे। इस व्यक्तिगत प्रार्थना में तनिक भी समय नहीं लगता। उसमें समय की नहीं, जागरूकता की जरूरत है। जैसे आँख मूंदने में समय नहीं लगता, वैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में भी समय नहीं लगता। अपितु जिस प्रकार हम जानते हैं कि पलक अपना काम करती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले को याद रखना चाहिए कि जिसका हृदय मलिन है वह उस मलिनता के रहते हुए प्रार्थना नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि प्रार्थना के समय उसे मलिनता का त्याग करना ही होगा। जैसे कोई मनुष्य किसी के सामने कोई मलिन कार्य करने से शर्माता है, उसी तरह उसे ईश्वर के समक्ष भी मलिन कार्य करते हुए शर्माना चाहिए। लेकिन ईश्वर तो सदैव हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, विचार को जानता है। अतः ऐसा एक भी क्षण नहीं जब उससे छिपकर कोई भी काम अथवा विचार किया जा सकता हो। इस तरह जो मनःपूर्वक प्रार्थना करेगा वह अंततः ईश्वरमय हो जाएगा, अर्थात निष्पाप हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 8:00 समाचार प्रभात एवं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 9:55 पर और पुनः 11:00

55 मिनट पर ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश, कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

आइए जानते हैं शाम को हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे। 6:10 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:45 पर। ये समाचार अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। आज की नसीहत में आप सुनेंगे पशुओं की सही उपयोगिता के लिए टीकाकरण। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक पशु मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 8:30 पर।

समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनी गंधा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

पुनः आप कार्यक्रम संबंधी जानकारी 10 बजे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षर

0: शोधकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

0: पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ते की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैन

श्रोताओं, ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस आवाज ने पूरे देश को मुस्कुराने पर भी मजबूर किया और सोचने पर भी। ये वही आवाज है जिसमें लोक की मिट्टी की सौंधी महक है, रंगमंच की तपस्या है और जीवन के अनगिनत रंगों का अनुभव है। जी हाँ, रघुवीर यादव एक ऐसा नाम जिसने 60 के दशक से अब तक हर पीढ़ी को अपना कायल बना लिया है। नाटकों का मंचीय संसार हो या टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी, या फिर उनके यादगार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं, जैसे मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, पीपली लाइव या वाटर में, और अब पूरे देश को जोड़ता पंचायत सीरीज में उनका किरदार प्रधान। उनके किरदार, उनके गीत हम सब के जेहन में बसे हुए हैं।

0: अग्रज नाट्य दल बिलासपुर द्वारा पिछले दिनों बिलासपुर में 4 दिवसीय योगेश स्मृति नाट्य महोत्सव का आगाज हुआ। रंगमय हुआ बिलासपुर और इस रंग यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता रघुवीर यादव द्वारा मंच पर प्रस्तुत नाटक पियानो। हम सब का ये सौभाग्य रहा कि पियानो का मंचन हमने मंच से देखा और हमने सीधे सीधे उनका अभिनय और उस पूरे मंचन के दौरान जो हमारी एकाग्रता उस पूरे कार्यक्रम में बनी रही वो भी बड़ी अद्भुत रही। उनकी आंखें भूलती हैं, खामोशी संवाद बन जाती है और उनकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अपने बिलासपुर प्रवास में हमारे छोटे से अनुरोध पर रघुवीर यादव जी आज आकाशवाणी के स्टूडियो में श्रोताओं से रूबरू हैं। आकाशवाणी बिलासपुर की इस विशेष भेंटवार्ता में हम हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अप्रतिम अभिनेता, संवेदनशील गायक और हमारे आज के अतिथि रघुवीर यादव जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन आकाशवाणी बिलासपुर में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बातचीत चूंकि आपके नाटक से ही शुरू हुई है तो मैं पहले वहीं से ही बात शुरू करना चाहूंगी, पियानो से ही।
1: जी।
0: और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को बड़े ही सहज सरल ढंग से आपने मुख्य रूप से उसको सामने प्रकट किया और उस नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं। थिएटर का लक्ष्य, थिएटर का उद्देश्य, हमारी संवेदनाएं, हमारे अंदर जो घट रही घटनाओं की अभिव्यक्ति, सब कुछ दिखाई दिया। तो ये प्रेरणा इस नाटक को लेने की, क्योंकि सब कुछ इसमें आपका था, अभिनय भी, निर्देशन भी, कास्टिंग भी, सब आपने खुद किया इसका।
1: जी, जी।
0: कैसे ये नाटक इतना प्रभावी बन पड़ा?
1: एक्चुअली ये नाटक फेरेंस कैरेंथी का एक प्ले है जो क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखा था। तो जब मैंने ये प्ले पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा, तो मुझे दम तो था नाटक में, लेकिन वो एक्सरसाइज, बतौर एक्सरसाइज की तरह वो लिखा गया था।
0: जी जी।
1: तो मैंने फिर इसको चाहा कि क्योंकि आज जो जमाना है अकेलेपन से बहुत
0: जूझ रहा है।
1: हाँ, जूझ रहा है
0: जी।
1: और हर शख्स ऐसा भटका हुआ है और ऐसे लगता है, तो ये तो मेरे जहन में था, वो मेरे अंदर थी ये बात। फिर क्या है कि मेरा था म्यूजिक से ताल्लुक, तो उसमें पियानो है कि वो पियानो बेचना चाहती है और एक शख्स है जो और दोनों तूफान आ गया है, मतलब पूरा मुंबई में बारिश है, तो मैंने उस तरह की बारिश है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बस एक शख्स है जो मज़े लेने के लिए। तो मेरे जहन में आया कि वो पियानो क्योंकि अकेलेपन, अकेली रह गई है और पियानो बेच रही है, जो उसकी ज़िंदगी में वो साथ रहा। तब मुझे मेरे जहन में आया कि म्यूज़िक तो एक ऐसा है कि अकेलापन महसूस होने ही नहीं देता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे ही साथ हुआ कि म्यूज़िक ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी भी कोई भी परेशानी, उलझन, कुछ भी हुआ, कितनी भी आफत मुसीबतें आईं, म्यूज़िक ने मुझे हमेशा पकड़ के खींच लिया और खींच के एक नया रास्ता दिखा दिया।
0: क्या बात है।
1: हाँ। तो मैंने फिर उसको उसका जो एडेप्टेशन किया, तो फिर उसमें मैंने ये डाला कि भैया अगर आपके पास म्यूज़िक है तो उसे जाने मत दीजिए, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो तो तमाम एक उम्र क्या, वो तो कई उम्रों के लिए कम है।
0: सच। हाँ। जी जी
1: कि
0: जी।
1: आप उम्र कितनी भी उम्र तक बजाते रहिए, करते रहिए, तो ऐसा लगता है कि उम्र बड़ी छोटी सी लगती है। तो ये मुझे लगा, तो फिर मैंने कहा कि ज़माना उसी तरह का है,

0: कि लोग अकेले भटक रहे हैं, तो अकेलेपन का एक वो है कि एक सुझाव है कि आप म्यूज़िक इख्तियार कर लीजिए और फिर देखिए आपका अकेलापन कैसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
1: क्या बात है। और ये सारी बातें एक नाटक के माध्यम से हर व्यक्ति तक बड़ी सुंदर ढंग से पहुंची हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पीछे जो आपकी कला साधना दिख रही थी कि एक क्षण के लिए भी मंच से यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकाग्रता भंग नहीं होती है, तो कलाकार की कितनी बड़ी साधना उसके पीछे है कि वो बांध के उतनी देर तक सारे दर्शकों को रख सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें हर जगह सभी को पता है कि आपका बचपन कैसे बीता, आप कैसे बाहर निकले वहां से और क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से चलते चलते ये यात्रा तय हुई है।
0: जी, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये 50s के आसपास की बात है, और उस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल से जनसंख्या भी बड़ी कम हुआ करती थी, बहुत दूर दूर तक सब जंगल और ये था। तो मेरा बचपन, मेरा मैं किसान हूँ, किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ
1: जी,
0: और बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंसे चलाया करता था, दूध का धंधा होता, यादव हूँ तो जाहिर है कि बस यही धंधे कर पाते थे
1: बिल्कुल,
0: और खेती वेती होती रहती थी। तो मुझे सबसे पहले म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक है, तो सबसे पहले जो मेरा म्यूज़िक का एहसास, जो स्वर मुझे मिले, वो मैं आधार ताल, जबलपुर में एक जगह है, वहाँ एक तालाब है जिसकी वजह से वो नाम पड़ा आधार ताल। वो तालाब के बगल के में एक टीला है, टीला पे एक मकान हुआ करता जो मेरे नाना जी का था, वहीं हम रहते थे उसी में। तो वहीं वो ज़मीन पड़ी हुई थी नाना जी की, वहीं खेती वेती किया करते थे, तो हम गर्मियों में वहाँ जाया करते थे। तो मुझे गर्मियों के ये इसलिए याद है, जाते तो हमेशा थे लेकिन गर्मियों की याद है कि मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा। तो वहाँ जो खेतों की मेड़ से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ दूर से बेचता था। अब मैं 3.5 साल का हूँ और मैं उसको सुनता था, तो पापड़ बेचता था कि मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
1: क्या बात,
0: मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले, तो फिर वो देखता था, फिर वहीं से पापड़ बेचते हुए, मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर आके बैठ जाता था, फिर पापड़ देने लग जाता था कि मोम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो।

0: बस ये जो मैंने, और इतनी आत्मा से इतना रूहानी लगता था वो उसका, तो मैं फिर दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था। वहीं से फिर संगीत का मुझे जो हुआ, फिर रामलीला रासलीला ये सब। और वो ज़माना ऐसा था कि सब्जी बेचने वाले भी गा गा के सब्जी बेच रहा, एक चूरन वाला आता था वो भी मैं कभी नहीं भूलता, कि भीख मांगने आते थे एक सूरदास जी, वो भी वो रसखान का एक भजन गाते हुए निकलते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था, ऐसा लगता है मैं भी भीख मांगने लगूं इनके साथ में, इतना मजा। तो वो रसखान का गाते थे, वो अपनी उनकी पत्नी थी, अंधे थे वो, पत्नी थी, पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। वो था कि आज गई हो तो भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, भाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं, अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भो है, बनाया बनाया ढिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारती, जो चुचकारत छो नहीं, धूर भर अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी, और वाचा भी को रस खान बिलो, कत भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी।
1: वाह वाह वाह, आपके बचपन की जो यादें हैं और बचपन में जो सुर आपके अंदर गए हैं धुन के रूप में, उसको तो आपने बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से आज हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है। और संगीत के ये जो बीज, जो छोटे छोटे अलग अलग घटनाओं के द्वारा, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो, पापड़ बेचने वाला हो, उन सब से आपने ग्रहण किया।
0: जी यही सब लोग उस्ताद हैं मेरे। हाँ, तो लोग ढूंढते रहे तो मुझे तो पूरी पूरी पूरी कायनात ऐसा लगता है उस्ताद है, पेड़ पौधे चिड़ियों पक्षियों से। मैं फिर गाना गाता तो एक फैक्ट्री से वो बजता था सायरन, सायरन तो वो जब बजता था तो उससे मैं आवाज में लाके फिर बड़ी देर तक गाता रहता था। एक बात ये है कि ईश्वर देता सभी को है, अगर हम उसको

0: और वहीं से सब लोग सीखते रहते थे।
1: बहुत सारा इनपुट्स आपको अपने छोटे से गांव में ही मिल गया था।
0: ये मैं एक बात बता दूं, सब जगह है ये। अब तो खैर जो ये सब ये फोन और ये सारा आ जाए तो मेरे ख्याल से वो जो जड़ें हैं, वो जो जमीन है, वो थोड़ी सी मिटते हुए नजर आ रही है।
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: तो छत्तीसगढ़ भी कितना खूबसूरत, यहाँ के लोग वहाँ भी थे, वो भी बहुत,
1: यहाँ की भी लोक संस्कृति, जितना लोक के प्रति आपका अनुराग है और लोक से आपने जो ग्रहण किया है वो आपको सभी जगह एक सामने दिखाता है। चाहे बुंदेलखंड में जाएं, चाहे आप मालवा में जाएं, चाहे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आएं, वो सब के अंदर प्रकृति की जो सुगंध रची बसी है वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, उसमें कोई अलगाव नहीं रहता। तो आप तो निकल गए थे, गाँव से ही बाहर निकल गए थे, कुछ खोज रहे थे, कुछ तो खोज लिया था, कुछ और पाने के लिए निकल ही गए थे। तो वो निकलने बाद की जो यात्रा थी वो काफ़ी लंबी रही और ने आपको दिशाएं दे दी जिंदगी
0: जी,
1: की।
0: जी जी जी जी क्या है कि मैं वो तो मैं मालूम होगा सभी को कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो गया था। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ सब लोग का बस एक ही इरादा था कि बच्चा सातवीं आठवीं तक पढ़ जाए, उसके बाद तो फैक्ट्री में डाल दो उसको, उसके बाद शादी कर दो, उसके बाद ये
1: जी,
0: बस
1: जी।
0: यही था। तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता है हटके करो ना, ये क्यों सब कुछ यही, सब लोग एक ही जैसा करेंगे तो मज़ा क्या है जिंदगी का। बस फिर वो बहाना मिल गया। तो आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि उसने मुझे फेल कर दिया।
1: हाँ, सच बात है।
0: हाँ, मुझे तब से लगा कि इंसान को फेल होना भी कितना ज़रूरी है, और हमेशा कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है, जब जब टूटा है तभी कुछ ना कुछ बन ही जाता है, और ऐसा बनता है कि उस टूटने को उस वक्त इतना पॉजिटिव ले लेते हैं कि या मालिक अच्छा किया उस वक्त टूटा वो
1: जी।
0: हाँ, तो फिर गया मैंने पहली दफ़ा थिएटर नाम, जब वो घर से गया तो ललितपुर में नाटक कंपनी लगी हुई थी, यन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी
1: जी, जी।
0: उसका नाम था भोपाल थिएटर कंपनी, वहाँ पाकिस्तान के थे, लाहौर के वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन पारसी थिएटर के नाम से वो था बस। तो वहाँ फिर मैं हो गया, क्योंकि मैं जिसके साथ गया था प्रोफेशनल भगोड़ा था वो, जहाँ भी जाता भाग उसका दो चार दिन बाद भाग ही जाता था, तो उसके साथ गया तो उसकी आदत थी, वहाँ छोड़ के चला गया। तो फिर मैं इनके पास गया,
1: अकेला छोड़ के गया।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ओके जी।
0: तो गया तो फिर मैं नाटक कंपनी के मालिक जो थे वो सुबह सुबह पहुँच गया कि ऐसा ऐसा है, तो क्या करते हैं, उनका गाना गाता हूँ, उनका सुनाओ। तो मैं बुंदेलखंडी, मुझे साह शाह में फ़र्क मालूम नहीं था, मैंने सुना दिया कि बदली तेरी नज़र तो नज़ारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, मैं गा के सुना देता हूँ।

0: नजर तो
1: तो ये
0: कहने लगे।
1: उच्चारण वाला पार्ट फिर धीरे
0: हाँ तो नहीं तो
1: धीरे
0: फिर उन्होंने कहा बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा ख़राब है। तो मैंने कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम तलफ़ुज़ का मतलब क्या होता है। तो हंसने लगे सारे लोग हैं
1: जी।
0: तो हंसे तो फिर मुझे फिर शर्मिंदगी हुई। तो कहने लगे बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है, तलफ़ुज़ का मतलब प्रोनंसिएशन होता है। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर लूंगा। तो मुझे 2 रुपये 50 पैसे में उन्होंने रख लिया। और फिर वो शर्मिंदगी,
1: ये 60 के दशक की बात है।
0: जी जी जी जी 67 के बात है। तो उन्होंने मुझे रख लिया 2.5 रुपये रोज पे। और वो शर्मिंदगी, वो जो तबला वाला फिर मैंने कहा मैं तबला ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैंने 6 और 1 साल के अंदर उर्दू लिखनी पढ़नी भी सीखी।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: उससे फिर और मैंने देखा कि उर्दू जबान जो सुनना सिखाती है जा जा शा सा, तो वो सुनना, तो वो फिर वहाँ फिर रहने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते शुरू में गाना गाता, तो फिर उन्होंने मैं एक्टर बना दिया। पहली बार सिपाही बना मैं, उसे फिर रोया मैं कि ये क्या मुझे हाथ वो पकड़ के खड़ा कर, बोलना कुछ नहीं था लेकिन खड़ा कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, भाला पकड़ा के खड़ा कर दिया था। वो अनारकली नाटक होता था उसमें। खैर वहाँ से फिर मुझे लगा, सब लोग कहने लगे बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, सीखो ये, तब सीखना फिर शुरू किया, फिर आग लगी।
1: आपकी पढ़ाई लेकिन आपने जारी रखी ना।
0: हाँ नहीं फिर उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम देने दोबारा से गया वहाँ जबलपुर गया, फिर कर लिया था मैंने।
1: जी जी जी जी। तो ये जो अंदर से आपके अंदर आगे बढ़ने की जो एक बात थी वो लगातार बनी रही। फिर आप NSD तक भी गए, फिर NSD

0: एक अलग ही ढंग से आपकी प्रतिभा
1: जी
0: उसे एक अलग उठान मिला,
1: जी
0: तो वो अनुभव कोई यादगार क्षण वहाँ के जो आपको वहाँ से इतने वर्षों तक जोड़े रखे सिनेमा में आने से पहले?
1: क्या है कि एक तो वहाँ थिएटर मुझे समझ आया, यहाँ पारसी थिएटर
0: बिल्कुल,
1: और जो खाना बदोशी में जो मुझे सीखने मिला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत दिन वही थे। और हमेशा इंसान कमियों में सीखता है, अभाव में ही सीखता है। अगर सब कुछ दे दिया जाए तो कुछ तो मैं इस मामले में इत्तेफाक से मैं लकी रहा कि मुझे वो बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ, मुझे पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता है।
0: जी जी,
1: उसी वक्त मेरी नौकरी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी लग रही, तो वहाँ 450 रुपये थे, यहाँ सीखने के लिए 200 रुपये था स्कॉलरशिप।
0: जी जी,
1: तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, 450 नहीं चाहिए मुझे, 200 रुपये चाहिए। मैं चला गया, भर दिया फॉर्म, और अलकाजी साहब थे तो वहाँ इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ तो 6 साल पारसी थिएटर का वो जब इंटरव्यू हुआ तो 45 मिनट तक इंटरव्यू चला। तो अलका साहब ने खुद ही कह दिया कि भैया हम आपके स्कॉलरशिप भी दे दी और अब आ जाओ, हम आपको सेलेक्ट कर लिया।
0: देखिए ये अनुभव आपका कितना काम है, सच बात है।
1: फिर मैंने 3 साल वहाँ ट्रेनिंग की, और मैंने एक्टिंग में नहीं किया, मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सीखना, तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट में डाल दिया। अब मेरे क्लास के सारे बच्चे, मेरी क्लास के का दूसरी और भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उन दिनों राज बब्बर भी वहीं थे और पंकज कपूर, ये सारे लोग थे उस वक्त। तो कहने लगे तू तो एक्टर, ये तो मजदूरों का काम है। मैंने कहा मुझे मजदूरी ही करना है। फिर उसमें जो स्टेज क्राफ्ट में मुझे मज़ा आया है, फिर मैं कारपेंट्री और ये उससे डिजाइनिंग और मेकअप और सारा कुछ सीखता रहा।
0: इस दौरान आपका संगीत का जो रुझान है उसको,
1: संगीत तो कहाँ छूटता है, संगीत तो मैं बिल्कुल अलग से टाइम निकाल के, और संगीत की वजह से ही फिर और भी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक तो क्या है, एहसास और ये जो इमोशंस की जो बारीकियाँ वो संगीत से ही बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, बड़े जल्दी पकड़ में आती।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: तो
0: जी,
1: ये मेरे साथ था। तो फिर बस लगा,
0: इतने सारे वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं
1: जी,
0: तो गांव से तो कुछ तबला आपने
1: कुछ
0: कहा?
1: नहीं कुछ नहीं जी, मेरे पास वो तबला तो वो भी नहीं आता उसको तबला समझ रहा। हारमोनियम में हाथ नहीं लगाने NSD गया, तब फिर मुझे हारमोनियम पहली दफा मैंने, क्योंकि वहाँ छू नहीं देते वो पारसी थिएटर में।
0: हाँ अच्छा, नहीं मुझे लगा आपने कहा तो उसका
1: कनेक्शन। नहीं तो हारमोनियम था वहाँ मेरे मंदिर में रखा हुआ था, लेकिन इतना वो नहीं था, नहीं बजा पा रहा था मैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में लगा हुआ, तो फिर घर से भागना भी था। अगर वहाँ हारमोनियम सीख लेता फिर वहीं मंडली बना लेता मैं, तो ये भी जरूरी था। तो ईश्वर की तरफ से जो होता है। फिर NSD आए वहाँ, फिर मैंने हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट, फिर सितार और ये जो है, तो बस ऐसे ही दिल बहलाने के लिए।
0: नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो फ्लूट बज रही थी
1: जी जी,
0: मतलब बांसुरी आप इतना सुंदर बजा रहे थे स्टेज में, लाइव बज रही थी, तो वो तो बता रही है कि आपने कितनी गहराई तक संगीत को साधा है।
1: तो एक तो क्राफ्ट, स्टेज क्राफ्ट में था, तो फिर बनाना भी आ गया, फिर बनाना भी सीख लिया। मेरे पास करीब 1500 करीब आसपास, और कई तरह की फ्लूट बना रखी मैंने, खुद इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे तो हर उसमें ये पाइप अगर घर में पड़ा हो तो इसका मैं फ्लूट बना लेता। पीवीसी पाइप हमारा वो एक बार वो आया, प्लम्बर आया तो उसका पाइप चोरी हो गया घर में लगा था, मैंने कहा घर से कौन, तो पता लगा मैंने पाइप काट के फ्लूट बना ली।
0: क्या बात है सर, मतलब जुनून था ये, ऐसा नहीं कह सकते, ये आपके अंदर की प्रतिभा का अतिरेक था कि आप किसी भी जो भी चीज आपको सामने दिख रही थी उसको आप एक वाद्य यंत्र में बदल दे रहे थे फ्लूट के रूप में, अद्भुत बात रही। और फिल्मों की तरफ जो बातें हमने तो आपको, मतलब मैं तो ये कहूँ कि पूरे भारत में आप कई पीढ़ियों के प्रणेता रहे। मतलब हमारे बचपन में हमने चाचा चौधरी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने से शुरुआत की, आज की जनरेशन आपको पंचायत में देख कर खुश हो रही है, तो आप तो सभी जनरेशन सभी दौर के पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात जो है कि फिल्मों में जो शिफ्ट हुआ आपका, कि आप पहली बार जब फिल्मों में, तो क्या आपने अपनी इच्छा से अभिनय चुना है, कैसे आना?
1: नहीं, अभिनय तो था लेकिन फिल्मों के अभिनय का मुझे वो नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि करूँगा तो अच्छे तरीके से करूँगा। लोगों ने कोशिश की कॉमेडियन बनाने की, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि इतनी जिंदगी सीखने में लगाई और सिर्फ मुझे एक ठप्पा लगाना चाह रहे हैं, तो मैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह भी रहे थे जब NSD 3 साल पूरे किए, कोर्स ख़त्म किया, तो वहाँ पे कह रहे थे कि आ जाओ बम्बई आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो थिएटर करूँगा। मैं इत्तेफाक से मुझे वहाँ रेपर्टरी में, NSD रेपर्टरी में, तो मैं 10 साल फिर उसमें रहा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कई फिल्मों को मैंने मना किया, छोटा मोटा मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर किस्मत वही, मैसी साहब मिल गई मुझे, तो मैसी साहब मैंने वहीं रह के की दिल्ली में, सलाम बॉम्बे वहीं रह के की, सही परंजयपी की मैंने 3 फिल्में की वो भी वहीं रह के, बाद मुझे शेखर कपूर पकड़ के ले गए अपनी फिल्म के लिए।
0: जी जी जी
1: क्यों मैंने उनकी फिल्म

0: मना कर दिया
1: बिल्कुल
0: था कि कहीं से फोन आया उनका कि वो एक फिल्म बना रहे हैं दुश्मनी, उसमें कॉमेडियन का रोल है। तो मैंने फौरन कहा नहीं मुझे नहीं करना, कह रहे शेखर कपूर कर रहे हैं, मैंने कहा कोई कर रहा हूँ मैं कॉमेडियन का नहीं करना मुझे। तो शेखर खुद ही मेरे घर पहुंच गए, मुझे फिर वो ले गया, फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ।
1: और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि मैसी साहब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला, और उसके बाद की कई फिल्में ऐसी हैं, करीब 7-8 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें ऑस्कर से भी नॉमिनेट किया गया, ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया, चयनित किया गया। तो ये सारी उपलब्धियां आपके खाते में, मुझे तो लगता है उपलब्धियों की किताब है जो मैं इस इंटरव्यू में तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपके अभिनय की बात हो, आपके संगीत की बात हो, आपके वादन की बात हो, आपके स्टेज क्राफ्ट की बात हो, इतनी सारी कलाओं को आप अपने में समेटे हुए हैं और रंगमंच आपका बेस बना, आधार बना है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रंगमंच के लिए जब वर्कशॉप में आते हैं बड़े उत्साह से आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ जुड़ने के लिए कुछ झरोखे चाहिए होते हैं जहाँ से उनकी बात हम तक आए, हम उन्हें कुछ बता सकें। ये छोटी छोटी खिड़कियों में ये थिएटर्स बड़े प्रभावशाली हैं, तो उन सारे लोगों को जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, क्या क्या हासिल किया जा सकता है ज़िंदगी में थिएटर से जुड़ के?
0: एक तो ज़िंदगी का सलीका थिएटर से ही मिलता है। आप अगर थिएटर से जुड़े हैं तो एक तो कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, और थिएटर को एक्टिंग के उसमें ना लें, अगर ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम एक्टिंग करने के लिए थिएटर, ज़िंदगी सीखने के लिए अगर आपको जाना है तो थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सब कुछ सीखने मिलेगा और सीखना पड़ेगा आपको
1: जी।
0: क्योंकि थिएटर में ऐसा कोई काम नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए, वो झाड़ू लगाने से लेके और कपड़े धोने से लेके और खाना बनाने से लेके सब कुछ, सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है कि आपको किचन संभालना आना चाहिए, क्योंकि वो जो रस का स्वाद जो आप तैयार करते हैं वही ज़िंदगी का स्वाद है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालते हैं। और क्या है कि सीखने के लिए समंदर पड़ा हुआ है पूरा, एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, सच कह दूँ ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इतना कुछ पड़ा हुआ है। और अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे वो बनना है, जैसे आपने मंजिल बना ली तो आप तो बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? इसलिए मैंने कोई मंजिल नहीं बनाई, मैंने सीखना बस रास्ता बनाना चाहा है कि रास्ता बनाते चलूं, कहीं ध्यान नहीं जाता अवार्ड ये मिल जाए, वो एकदम जिम्मेदारी लगती है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस ये पता लग जाता है अगर कोई अवार्ड मिल जाता है कि सही रास्ते पे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं कि मैं बस अब बन गया, बनता कभी नहीं है, सच कह रहा हूँ, जितना सीखते उतना खालीपन लगता है। तो एक तो मुझे तैरने में मज़ा नहीं है, मुझे डूबने में ज़्यादा मज़ा आता है कि डूब के अगर कोई काम किया जाए तो देखिए उसका कुछ और ही प्रभाव पड़ता है, असर होता है। कोई भी काम अगर डूब के किया जाए बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। कल का जो नाटक था उसने बहुत सारी बातों के साथ साथ संवेदनशीलता के एक पक्ष को भी बड़े प्रबल रूप में रखा। एक मजाक के रूप में एक बातचीत शुरू होती है, बाद में एक संवेदनशील एक इंसान के रूप में बदलना, और फिर तो ये थिएटर के साथ भी मुझे लगता है कि ये जो कलाएं हैं आज जो संवेदनहीनता के दौर से हम गुजर रहे हैं, प्रकृति के प्रति हम बोलते हैं लेकिन हम आपस में भी संवेदनहीन हो रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: तो ये थिएटर किस प्रकार इस चीज को हमारे जीवन में वापस ला सकता है?
0: बस यही है जैसा मैंने कल वो प्ले, यही इसीलिए मैंने किया कि भैया ये कुछ तो एक अख्तियार कर लीजिए, कोई एक चीज़ तो, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ हो, अब कुछ तो एक आपका साथी होना चाहिए हैं, इंसान साथियों में नहीं आते
1: जी।
0: हाँ, यही कोई एक कला है, अगर आप उसे अख्तियार कर लें।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
0: करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, तो बस यही है। जी जी जी।
1: एक ही नाटक आप कई बार कई मंचों पे करते हैं
0: जी,
1: क्या कुछ नया हो जाता है? जैसे एक राग मालकोंश कोई प्रस्तुत करता है एक मंच पे, अगली बार फिर राग मालकोंश ही गाता, फिर भी वो नया होता है।
0: हाँ, क्योंकि मैंने बांध के कुछ नहीं रखा है कि रट्टे मार के, मैं बिल्कुल नहीं करता, समझ के और वो है उस तरह से मैंने रिहर्स किया इस नाटक को, तो हर दिन चेंज हो जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ फर्क आ जाता और मजा उसी में है, एक जैसे में नहीं आता मजा, एक जैसे मजा ही नहीं आता, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि कल जैसे किया था आज ही वैसे नहीं, फिर ऑडियंस को देख के भी फिर कुछ
1: इम्प्रोवाइज
0: हाँ,
1: होता है
0: हाँ, हाँ, जी, जी।
1: कई सारी भाषाओं पर आपका अधिकार है
0: जी।
1: और कई सारे डायलॉग्स आपके बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को बहुत हंसाते हैं, आप हर भाव में बड़े पारंगत हैं, आप हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, गंभीर भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात हमारे श्रोताओं तक इस रेडियो के माध्यम से पहुंचे?
0: वो जो रास्ते में दवा बेचने वाले नहीं होते हैं, तो मैंने एक बार करके दिखा दिया था, यूं इम्प्रोवाइज थे वो सारा जी। तो लो जी उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फ नागर मांग कर पानी ना पिए, अजगर करे न चाक

0: पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दादा राम बच्चे जरा बैठ जा। तो मेहरबान कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान आपकी बस्ती में आपके नगर में हर माई की 24 तारीख को आता हूँ। क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ बताऊंगा। पेट में दर्द होता है, मसूड़ा सूख गया है, पेट में दर्द होता है, जो दवा बताऊंगा एक तोला गद्दी पर रख के फांकी मारू, ऊपर से एक लाट ठंडा पानी पियो, सुबह को खाओ, शाम को मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। दांतों में दर्द हो गया है, मसूड़ा सूख गया है, जो मंजन बताऊंगा एक तोला गद्दी पर रखे, दो घिस्से इस तरह मारो, दो घिस्से उस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो 32 बार।
1: क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: थैंक यू सो मच।
1: कितने अद्भुत अनुभव आपको अपनी इस रंग यात्रा के दौरान हुए हैं
0: जी।
1: और ये खुशी, ये हंसी, ये जो आनंद है आपके जीवन में, और उमंग लाए और आप बहुत आगे तक जाएं। बहुत ही अच्छी बातचीत, बहुत सारे पक्षों को हमने आज इस बातचीत में समेटने की कोशिश की है। हमारे श्रोताओं में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: एक तो ऑडियंस को देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगता है कि बार बार वापस आता रहूं। और क्या है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म करने, यहाँ से भी कुछ सीख के ही जाता हूँ कि जिस तरह के लोग, जिस तरह से प्यार यहाँ मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं शामिल रहें। तो बस यही है, और बस यहाँ जो थिएटर रंगकर्मी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वक्त ज़ाया ना करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि खूबी सबके अंदर ईश्वर ने दी हुई है, खामियां भी हैं खूबियां भी हैं, तो खामियों को खूबियों में तब्दील करिए, और जो खूबियां उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। सीधी बात यह है, वक्त जाया ना करो, लेजी मत बनो।
1: बहुत अच्छा लगा आज रघुवीर यादव जी हमारे साथ रहे, और वाकई में आपकी ये सृजन धर्मिता, इसी तरह आपकी मंजिल, जैसा आपने कहा कि आप मंजिल को देख कर नहीं चल रहे हैं, बल्कि यात्रा के अलग अलग पड़ाव में आप लोगों से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, और सारी बातों को साथ लेकर आपके अंदर जो कुछ भी है उसे उड़ेल कर आप दे रहे हैं हम सबको। ये यात्रा ऐसी ही बनी रहे, आपकी सृजन धर्मिता से आप लोगों को यूं ही प्रेरणा और मनोरंजन देते रहें, यही मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और बातचीत करने के लिए।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थी सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ। इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग।

0: राइटर के, मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेगी।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते हैं।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं।

इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

नहीं। 1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन

0: ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी। निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान

हितकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अब तक लगभग 6,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% है। इस खरीफ सीजन में राज्य में 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को मांग के अनुरूप खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई करने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक किसानों को 7,28,000 मीट्रिक टन उर्वरक और 3,00,000 क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 केवी विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा आज सुकमा में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, ऋण, बैंक और वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करने और उससे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: Miriam vive ora FM 20.
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 10:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। फरमाइश गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का वक्त होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे और 12 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 11:55 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट भजन संध्या। आप सुनेंगे 5:10 पर, 5:30 पर होगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार

समाचार आप सुनेंगे। शाम 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे 6:20 पर प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 7:00। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात होगी दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। आज की नसीहत में आप सुनेंगे पशुओं की सही उपयोगिता के लिए टीकाकरण, साथ ही होगा आज का टीप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:20 पर। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:00। फिल्मी गीत पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 10:30 पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, West Bengal की हुगली जेल में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे

0: मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं, जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे, उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:20 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10:00। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही, समाप्त होता है कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, 10:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: संदेश पहले आपने सुना तुलसी कुमार और मोहन भारद्वाज को, अगला गीत सुनिए स्वाति शर्मा के स्वर में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं और अगला गीत सुनिए नेहा कक्कड़ के स्वर में, गुरु रंधावा के स्वर में।

सुब्रनील पॉल के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:30 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोता साथियों, और कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त दिनेश्वरी यादव। श्रोता साथियों, संगीत व मधुर भाषा है जो बिना कुछ

वह भी अपनी बात कह देती है। इसी संगीत की सुगंध और आपकी पसंद के रंगों से सजा है हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोता साथियों, आइए आपको लेकर चलते हैं फिल्मी गीतों की दुनिया में, जहां हर धुन एक एहसास है, हर गीत एक कहानी और हर फरमाइश स्नेह का सुंदर संदेश। श्रोता साथियों, इस वक्त पहला ईमेल हमारे पास आया है, जिसे भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरू साहू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, पाटिल राजदीप, राजेश राशि, राजेश शीतल, राजेश जतुका, किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर, गणेशपुर से फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्श बाबू अरसलान, झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, विमला वाधवानी, हर्ष खुशी, शुभम वाधवानी और कन्हैया लाल तीर्थानी। ये सुनना चाहते हैं गुमराह फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। साहिर के शब्द, रचना है रवि का, संगीत है

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। अगला गीत सुनिए फिल्म रजिया सुल्तान से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी के बोल है खयाम का संगीत है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं पीपर पारा पालछो मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, अमरपुर पेंड्रा से दिशा रोही दिव्यांश श्रीवास्तव, सदाबहार रेडियो श्रोता संत ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीनाकारी पुंजराज आर्यन, आरती पुंज आकर्षण, जयश्री पिंकी रिंकी रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनिए फिल्म वारिस से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है, उत्तम जगदीश का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं श्रृंगी ऋषि महानदी सिहाव पर्वतंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन, फुटानी चौक नरहन स्टेट से फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, बीके मिश्रा, गुंजन पराशर, अमित सुमित छोटू, लल्लू पंडित, मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन।

0: विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धरसीवा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गा पार, संतोषी नगर, रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाव यादव, रानो, खुशी, प्रवीण साहू, CL यादव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत, रमेश साहू, डुमराव बिहार से W अंसारी, सोना मादीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी, पार्थ, रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन और आवाज़ें हैं SP बालसुब्रमण्यम एवं लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा रविंदर रावल ने, राम लक्ष्मण का संगीत है।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोता साथियों, आप भी हमें अपने पसंद के गीत भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन कोड है 9600001। श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नए दिन नई फरमाइशों और मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त डिडनेश्वरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल से।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

آپ سن رہے تھے یہ غزل چندن داس کی آواز میں. پنکج ادھاس کی آواز.

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेश भर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी।

मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई, वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक 11 केवी विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल के अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा, योग और सर्वव्यापी होगा और जन जन तक पहुंचेगा, लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग

0: संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माया भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। मिलो न तुम तो हम, फिल्म है हे राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

La la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी। बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल। घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घेराए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया, लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया, मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है ज़रा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सब ने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ,

साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमज़ोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएँ खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है, हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, साधना। और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफ़र में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है। झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर घिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही

0: उठ गई, ननिहाल की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है। गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ

0: लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे हम मौसम से बिंधे मन लिए घूमते हैं, आँखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।
1: मुझे

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नज़ारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, ख़तरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है, भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला है गीत, बहू बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। कौन है बहू बेगम?

बहु बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार ज़रूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन के फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे और जानी

आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन। शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थीं। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया।

अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखिए तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी, फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज

0: लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी तीन रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907, अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

0: ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर आठ प्रांतों के प्रतीक आठ कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। आठ कमल भारत के उस समय के आठ प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम

हम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे। और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश फाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेट

0: इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि

0: सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू।

0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा कर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ आपके ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करें।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी
0: जी जी। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी आलिया बानो, कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवा के पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है,
0: हाँ वो
1: मुझे
0: तो
1: दिखाई
0: है
1: नहीं देता है ना।
0: जी, ये तो सहयोग
1: हाँ
0: परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये
1: हाँ
0: मुझे जी
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ
0: जी
1: जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं

0: रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ
1: जी।
0: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब।
0: अब थोड़ा आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना, कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए,
0: जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होंगी ये कार्यक्रम, अगर ज़िंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना
1: जी।
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात है।
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें।
0: पेन नेम है आपका लहरें?
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी।
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस है,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी मुंबई की नहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे ये लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल

0: पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ, ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ, चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी
1: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा मेरा भाई और

0: मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का, थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी
1: जी
0: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तबियत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए, हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
1: तो देखिए कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
0: मैम मैं मेरी सहेली के नाम लेती
1: जी, ले लीजिए।
0: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है
1: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
1: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम
0: जी। हम आपकी खुशी
1: बयान
0: को
1: नहीं कर सकती।
0: जी, आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती।

0: कि हमारे लिए बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
1: जी
0: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
1: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को बेचे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवन।
0: सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक हैं आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
0: जी,
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं।
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
0: जी,
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
0: जी,
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी,
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए।
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख

0: तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं, कुछ
0: जी
1: नहीं। हाँ।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैम, मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ
0: रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी।
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है,

नहीं, प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाज़ों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियाँ होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे।

सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपने पन की गुनगुनी आँच होती है। नानी।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियाँ जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा।

इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागों थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है

उसकी देह, बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था, वो अब महसूस कर रही थी, उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था, सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था, प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी

अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा के प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थी। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों

0: का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती। नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें, ये मौसम।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से।

हाँ, तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर ज़रूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर

देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। सुबह और शाम
2: 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों।

0: के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोरपिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, असकला, दोरना, जरहाडी, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढा, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटा पानी, श्री टोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, पुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, बड़नी झरिया, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडई पानी, होलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट, FM 102.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बता दें आज की शाम प्रसारित एवं मन प्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ पश्चात यानी शाम 5:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। हमारे केंद्र से सुन सकते हैं चित्रपट संगीत आज शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे आज शाम 6 बजे से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे आज शाम 6:10 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनिएगा आज शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार

0: तारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। हमारे केंद्र से सुनेगा गैर फिल्मी गीत आज रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीतकार जयगा आनंद आज रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे आज रात्रि 9:00 से। विविध संगीत का लीजिएगा आनंद आज रात्रि 10:00 से। फिल्मी गीतों कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात्रि 10:30 पर। तो ये थी जानकारी आज के साधिकरण प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनाते हैं पौडवाल की आवाज़ में गाए कुछ भक्ति गीतों को। तो लीजिए करते हैं शुरुआत इस भक्ति गीत के साथ।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्टकार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में

विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पाडवाल की आवाज़ में गाए कुछ ट्रेडिशनल गीतों को, पारंपरिक गीत अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म कृष्णा कॉटेज का ये गीत। नीलेश मिश्रा के लिखे बोल हैं, संगीत अनु मल्लिक का है।

सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

में अभी आप सुन रहे हैं फिल्म मर्द का ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म राज का ये गीत। समीर के लिखे बोल थे संगीत नदीम श्रवण का था।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट

मैं ये अब आपको सुनाते हैं फिल्म बलमा का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे बोलों को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण

0: ने प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए आपको बताते हैं आज की शाम प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर पश्चात यानी शाम 6:10 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:20 पर। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनिएगा आज शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे आज शाम 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण सुनिएगा आज शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का मौसम, आज का टीप, कृषक प्रेस मंच और आज का मंडी भाव। गैर फिल्मी गीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत का प्रसारण हम करेंगे आज रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे आज रात्रि 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का सीधा अनुप्रसारण हम आप तक पहुँचाएंगे आज रात्रि 9 बजे से। हमारे केंद्र से सुनेगा विविध संगीत आज रात्रि 10 बजे से। तो ये थी जानकारी आज के सांधिकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य और शेष कार्यक्रमों की।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?

0: रे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
9: मुझे याद सब है जरा जरा,
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
5: मन का सुकून, दिल की आरती,
6: सुरीली संदली।
10: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं, आइए थोड़ी देर में सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रायपुर में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार ह खंड औ अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बोआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करिन हैं। औ नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता मंत्रालय के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुईन। ए मौका में ओमन कहिन के सहकारिता किसान के आमदनी ला बढ़ाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे के सबले प्रभावी माध्यम बनत है। ओमन कहिन के सहकारिता के जरिया विकसित छत्तीसगढ़ के मजबूत नींव तैयार होही। मुख्यमंत्री है बताइन कि प्रदेश में अब तक 1300 ले ज्यादा नवा सहकारी समिति मन के गठन करे जा चुके हैं। सहकारिता के माध्यम ले पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता ला घलो बढ़ावा दे जाते। मुख्यमंत्री है ए मौका में उत्कृष्ट समिति मन ला सहकार प्रेरणा पुरस्कार दिन संग्रह संग्रहण पछर 2023 के 7 लाख ले ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक मन पर 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के पारिश्रमिक राशि के वितरण के शुभारंभ करें। एकर अलावा मुख्यमंत्री है कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ घलो करें। सहकारिता विभाग डहर ले

0: आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगी। कार्यक्रम के शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हरा झंडी दिखा के करें। ये दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्था के सदस्य, महिला समूह और आने आने वर्ग के लोगन मन हिस्सा लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बिहनिया जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल रद्दा मन ले शुरू हो गए है। पूरा देश ले लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्रद्धालु मनला शुभकामना दिन है। राज्य सरकार है खंड और अल्पवर्षा के संभावना ला देखत किसान मनले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बुवाई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक ले लगभग 20% पानी के बचत होते, प्रति एकड़ करीबन 5,000 रुपया तक के लागत कम आते और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाते। सरकार है धान के जगह में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिली, रामतिल और सोयाबीन जैसे दलहन और तिलहन फसल के खेती अपनाए ऊपर जोर दिन है। किसान मनले बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप के संग्रह, स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक ल अपनाए बर घलो कहे गए है। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मानसून ला देखत किसान मल्ला खेती ले जुड़े सलाह ऊपर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 4 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। 2 दिन के ए शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग्रह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुई। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ल और ज्यादा प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक के उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। राज्यपाल रमेन डेकाले आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के अगुवाई में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा ले जुड़े संत मन ले सौजन्य भेंट करें। ए मौका में राज्यपाल हकीन कि संत समाज के विचार और जीवन मूल्य शांति सद्भाव के संग्रह मानवीय मूल्य ल मजबूत बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। उमन सर्वोदय शांति पदयात्रा ल सामाजिक समरसता, अहिंसा और विश्व बंधुत्व के प्रेरक अभियान बताएं। बता दन कि ये पदयात्रा नेपाल ले शुरू होके लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करत छत्तीसगढ़ पहुंचे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा बस्तर संभाग में विभाग के योजना मन के प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करे के निर्देश दिन है। जेखर ले दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र के पात्र हितग्राही मन तक योजना के जानकारी आसानी ले पहुंच सके। मंत्रालय में विभागीय योजना मन के समीक्षा बैठक में उमन अधिकारी मनला योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाए के निर्देश दिन। उमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पर्यवेक्षक के खाली पद मन ऊपर जल्दी भर्ती, आंगनबाड़ी केंद्र में बुनियादी सुविधा के सुदृढ़ीकरण और पोषण पुनर्वास केंद्र मन में लयिका और महतारी मनला बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए ऊपर जोर दिन। संग्रह दिव्यांगजन और सियान मनले जुड़े योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित शिविर के आयोजन के निर्देश घलो दिन। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल पदभार ग्रहण करीन है। ए मौका में राखे गए अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईन। ए मौका में उमन कहिन कि संजय अग्रवाल के अनुभव के फायदा प्रदेशवासी मन ल मिलही। योग और ज्यादा सर्वव्यापी होही, लोगन अपन दिनचर्या में योग ल शामिल करही। प्रदेश में गाजगिरी के अलग अलग

0: मा चार मनखे के मौत हो गए है। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में गाज गिरे ले माँ बेटी के मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम करत रहीन, इही दौरान तेज बरसा शुरू होए ले दोनों एक ठिन रुक के नीचे खड़ा हो गिन, तभी गाज गिरे ले उखर मौकाच में मौत हो गई। उन्हें शक्ति जिला के डबरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में आज गाज गिरे ले एक दंपत्ति के मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करे बर गिरेन, इही दौरान तेज वर्षा के बीच गाज गिर गए, जेखर चपेट में आए ले दोनों मौकाच में मौत हो गए। पुलिस और प्रशासन है नागरिक मन ले अपील करीन है कि वर्षा और गरज चमक के दौरान खुला जगह और पेड़ के नीचे खड़ा होए ले बांचे और संग्रह सुरक्षित जगह मन में शरण लेके अपील करीन है। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के आज निधन हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सुखनंदन बंजारे के निधन ऊपर गहरा दुख जताइन है। ओमन सुखनंदन बंजारे के निधन ले पत्रकारिता जगत पर अपूर्णीय क्षति बताइन। दुर्ग पुलिस बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम में करीबन 1,60,00,000 रुपया के साइबर ठगी करैया अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। ये मामला में पुलिस दिल्ली ले 3 आरोपी मल्ल गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुदला बीमा अधिकारी बता के बंद पड़े बीमा पॉलिसी के राशि लहुटाए के झांसा देत रहीन और अन्य अन्य बैंक खाता में रकम जमा करा के ठगी करत रहीन। आरोपी मन के कब्जा ले मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद करे गए है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरज चमक के संग भारी ले अति भारी वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें एक दो जगह में गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। प्रदेश के अधिकांश जगह मन में काली हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। रायपुर में आज ले 2 के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुईस। सहकारिता विभाग डहा ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बचाए सीधा बुआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। एक रेसंग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:20 हुई, आइए सुनते हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण।

0: नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। दोस्तों इस कार्यक्रम के जरिए हम जुड़ते हैं अपने श्रोताओं के साथ फोन कॉल्स के माध्यम से और जानते हैं उनके मन की बातें उनकी ही जुबानी। और अब वक्त हो चला है फोन की घंटी भी बजनी शुरू हो गई है, तो आइए जानते हैं हमारे आज के पहले श्रोता कौन है। हेलो, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं अमोल बात कर रहा हूँ।
0: अमोल?
1: अमोल बसुमतारी जी, जी।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: आसाम से बात कर रहे हैं, इतनी दूर से आपने हमको फोन किया है। अमोल जी कैसे हैं और क्या करते हैं?
1: बहुत अच्छे, हम तो खेत के साथ जुड़ते हो, किसान के साथ, और अभी तो धान की खेत लगा रहा है और चाय का खेती है हमारा, और चुपड़ी वगैरह है, सब्जी वगैरह करते हैं।
0: अच्छा, खेती किसानी करते हैं और साथ में रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी जी जी, आकाशवाणी तो हर रोज रहता है, आकाशवाणी नहीं तो हमें कुछ काम भी करने के लिए मन नहीं बैठता है।
0: तो रेडियो
1: हमारे दिल को सुकून रखता है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमोल जी। तो रेडियो आप कब से सुन रहे हैं, कितना समय हो गया?
1: रेडियो तो हम 2000 से ही रेडियो सुना रहा है, 2000 से पहले 1998 से रेडियो सुनना शुरू कर दिया था।
0: अच्छा, तो आप बहुत सारे आकाशवाणी सुनते होंगे?
1: जी जी जी जी, हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट का सारे रेडियो स्टेशन को सुनता हूँ, और ऐसे तो ज्यादा से अच्छा लगता है, कहे तो फोन इन गानों के प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छा लगता है ज्यादा से, और ऐसे किसान वगैरह प्रोग्राम भी सुनता है, कुछ टॉपिक के बारे में प्रोग्राम भी सुनता है।
0: तो किस तरह के गीत आपको ज्यादा पसंद है?

0: ज्यादा तो 90s का गीत ज्यादा पसंद है।
1: 90s के गीत आपको पसंद है तो ठीक है, फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमोल जी।
0: किसी दोस्तों का नाम दे सकते हैं सर?
1: जी जरूर जरूर
0: जी, हमारा दोस्त है भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति और सानुश्री, राकेश पूरन वर्मा और हमारे सोराइडियो सुनारी असम टीवी है भाईकोन मुंडा और बिमोल बसुमतारी है धेमाजी असम से और रमेश पात्रो है गुनाघाट असम से। उन सभी दोस्तों को मैं सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए अमोल जी।
0: जी जी जी जी जी
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: नमस्कार नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
2: मैं भरत कुमार यादव बोल रहा था, हमारे पास साल से।
1: भरत कुमार
2: जी जी जी।
1: अच्छा क्या करते हैं आप?
2: मैं टेलर काम करता हूं सर।
1: अच्छा तो कैसा चल रहा है आपका काम?
2: ठीक चल रहा है सर, तो चल रहा है।
1: अच्छा तो आप क्या जेंट्स कपड़े सिलते हैं या लेडीज के?
2: जेंट्स सर।
1: जेंट्स के, अच्छा तो अभी तो ये ऑफ सीजन होता होगा आप लोगों के लिए, बारिश का समय है, स्कूल ड्रेस के काम होंगे अभी आपके पास में? अच्छा और रेडियो आकाशवाणी रायगढ़ कब से सुन रहे हैं?
2: बहुत दिन से सुन रहा
1: हूं। और सबसे पसंदीदा प्रोग्राम क्या है आपका?
2: एक दोस्त है ना जयराम भरे, उन्होंने बहुत मेरे को आग्रह किया था रेडियो सुना कर ऐसे करके।
1: अच्छा अच्छा भरत कुमार जी, किस तरह के गाने आपको पसंद है?
2: पुराना गीत सुना दीजिएगा।
1: पुराना गीत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार,
1: मैं बड़े शहर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर जयराम रात्रे। सर
0: जय राम रात्रे
1: जी। सर
0: अच्छा,
1: आपको बोला सर?
0: मैं रमाशंकर शुक्ला बोल रहा हूँ, रात्रे जी।
1: जी सर, जी सर, आप तो आवाज बहुत मीठी आवाज है सर, मजा आ रहा है
0: जी। शुक्रिया बहुत बहुत। कहाँ से पता क्या बताया आपने?
1: सर ग्राम बड़े खेला,
0: सारंगढ़
1: ग्राम बड़े खेला।
0: अच्छा, क्या करते हैं जयराम जी? अच्छा, मेडिकल प्रैक्टिशनर
1: जी।
0: और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: मेरे दो मैडम हैं और पांच लड़का तीन लड़की सर, मेरे तीन बहू हैं।
0: अच्छा, और रायगढ़ आकाशवाणी के कार्यक्रम कब से सुनते हैं?
1: जब से रायगढ़ चालू हुआ तब से सुना सर, मेरे घर तो रेडियो आया सुना, और जिस समय वो कैसे पता था सर, तब से रेडियो मेरे घर में।
0: ओ, बहुत पुराने श्रोता है।
1: बहुत पुराना सर।
0: अच्छा, और कैसे लगते हैं कार्यक्रम? आपको कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सभी कार्यक्रम सुनते हैं
1: जी, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर, डेली सुनता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी।
1: मेरे दोस्त है सर।
0: अच्छा,
1: चंद्रशेखर सोनी सर।
0: चंद्रशेखर सोनी आपके मित्र हैं?
1: मेरा खास दोस्त है सर, इसको बताऊँ आपके फरमाइश के बारे में
0: जी। चलिए, आपको जी, आपको और आपके दोस्त को हम सुनाते हैं ये गीत। धन्यवाद। हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आपको भी कौन बोल रहे हैं?
2: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल।
0: केसरी सिंह राजपूत भोपाल से?
2: जी सर, जी सर, बैरसिया है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
2: सर मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट।
0: पेंटर
2: जी, जी।
0: तो केसरी सिंह जी, कैसा चल रहा है आपका ये पेंटिंग वाला काम?
2: बढ़िया चल रहा है सर, अभी तो बढ़िया चल रहा है, वो बारिश जब लगेगी, ज्यादा बारिश होगी तब थोड़ा कम हो जाता है काम।
0: अच्छा, तो पेंटर मतलब ये घर वगैरह का पेंट करते हैं आप?
2: नहीं, ये लिखाई
0: वाला। अच्छा, लिखाई वाला, बैनर पोस्टर वगैरह।
2: जी जी।
0: केसरी सिंह जी, अभी जब से ये फ्लेक्स वगैरह आया है तो क्या आपके काम में कुछ फर्क पड़ा है इससे?
2: हाँ सर, फर्क तो बहुत पड़ा, लगभग 50% फर्क पड़ा है।
0: अच्छा, लेकिन फिर भी आपका काम चल रहा है? अच्छा।
2: हाँ, काम चल रहा है सर, क्या उसको काम में मतलब लगभग 15 या 17 साल दिए हैं, तो उसको अपन छोड़ भी नहीं सकते, और अपने गुजारे लाभ चलता रहता है।
0: चलिए, हम ऐसी काम
2: करना पड़ता है और संतोष रखना पड़ता है।
0: जी जी, चलिए हम ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका काम बहुत अच्छा चले और आप खूब इसमें नाम कमाएं, आपका नाम दूर दूर तक फैले।
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। केसरी सिंह जी, किस तरह के गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: सर मुझे पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, पुराने गीत, ठीक है, हम आपको पुराने फिल्म का कोई अच्छा सा गीत सुनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको केसरी सिंह जी।
2: ओके सर।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ सर जी।
0: मांगीलाल जी, अच्छा, गुना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आप। कब से?

0: सुन रहे हैं रेडियो के कार्यक्रम मांगी लाल जी।
1: मैं सुन रहा हूँ, कम से कम मुझे हो गए 20-25 साल हो गए।
0: 20-25 साल हो गए। और आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा और भी स्टेशन आप सुनते होंगे
1: जी।
0: कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम, कहाँ के कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आए?
1: मुझे रायगढ़ के भी पसंद आते हैं, विविध भारती बम्बई चलता है ना
0: जी,
1: उसमें भी मैं फोन भी लगाता हूँ। गुना आकाशवाणी है हमारा केंद्र, और भोपाल है, इंदौर है
0: जी,
1: सवाई माधोपुर है, और अपना कोटा राजस्थान है।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं?
1: गाने मुझे मीडियम अच्छे लगते हैं सर।
0: धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं ये गीत। हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: लोकेंद्र वर्मा?
2: हाँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: पूरी एनर्जी से बात कर रहे हैं आप लोकेंद्र वर्मा जी।
2: जी सर जी, ये तो आकाशवाणी के मतलब सालों से हम दीवाने हैं, मतलब 40 साल से रेडियो को सुनते आ रहे हैं, तो बिल्कुल खुश और मस्त रहते हैं क्योंकि आकाशवाणी के अच्छे गीत सुनने को मिल जाते हैं, अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपकी आवाज सुन के, आपके बोलने का अंदाज सुन के हमको भी एनर्जी आ गई। कैसे हैं लोकेंद्र जी?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये सब आप लोगों से ही सीखा है सर जी, हमने बात किस अंदाज में करते हैं, कैसे करना चाहिए। एक उद्घोषक महोदय की जो वाणी में जो मधुरता रहती है, वैसे जैसे धीरे धीरे हमारे में भी बात करने की थोड़ी वो लायकी आ जाती है सर
0: जी। प्रयास सभी का रहता है लोकेंद्र जी, और आप क्या करते हैं उज्जैन में?
2: सर मेरा सर हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है
0: जी,
2: और 40 साल से इसी बिजनेस को कर रहे हैं, हेयर कटिंग सैलून का, मतलब सबको खूबसूरत बनाने का मेरा बिजनेस है सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है आपका, और इसमें रेडियो की भूमिका भी बहुत ही खास होती है लोकेंद्र जी। सैलून वाला जो काम है उसमें रेडियो अक्सर लोग लगाए रखते हैं दुकानों में।
2: जी बिल्कुल सर जी, आपका कहना सत्य है। इससे पहले आपने देखा होगा जब जैसे टीवी और जो भी ये सोशल मीडिया और ये जो साधन है जब नहीं होते थे, तब एक मनोरंजन का जो साधन होता था वो सिर्फ रेडियो होता था।
0: बिल्कुल,
2: और रेडियो में गाने चलते रहते हैं, हमारे काम में मस्त रहते हैं, दूसरे ग्राहक भी उन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं
0: जी। और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हम अपने सभी श्रोताओं को खुश कर सकें, उनकी पसंद के अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें।
2: जी बिल्कुल सर जी। सर
0: लोकेंद्र जी, किस तरह के गाने आपको अच्छे लगते हैं?
2: सर मुझे ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, पुराने।
0: जी बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको आपकी पसंद के अनुसार पुराने फिल्मी गीत आपको सुनाएंगे। और धन्यवाद फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
2: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुने थे पुनीत कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए के पहले भाग का प्रसारण। इस कार्यक्रम का दूसरा और शेष भाग सुनेगा आज शाम 7 बजे से। FM बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, क्षमा कीजिएगा, छत्तीसगढ़ी समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: और स्वीकार करें और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाएं।
2: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।
3: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय

0: बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन, मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई करने की अपील की है। आईआईएम रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुआ। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है।
6: सहकारी सप्ताह चल रहा है और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर कृषि मंडपम में ये 2 दिन का प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न समिति के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसमें हमारे विभिन्न तरह के जो समिति हैं, दूध उत्पादक हैं, मत्स्य उत्पादक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हुए हैं। उनका अलग से सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं सबको और जानकारी मिलेगी।
5: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भी संबोधित किया। इस बीच सहकारिता विभाग द्वारा आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूह और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी डीएसआर तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार डीएसआर तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है, प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग,

0: जल संग्रहण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 4 जुलाई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा आज रायपुर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इस योजना को रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: जो मनरेगा चल रहा था उसको रिफॉर्म करके हमारे VBG राम जी स्कीम, इसको लाया गया है और बहुत सारी तकनीकी खामियां जो उस योजना में थी उनको पूरी तरह से परिष्कृत करके यह नए भारत 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में काम करने के लिए इस जो गारंटी है उसके साथ में हमारे VBG राम जी स्कीम को लाया गया है।
0: इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ नितेश उपाध्याय और डॉक्टर अनंत रघुवंशी ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं और इसकी विशेषताओं के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। राज्यपाल रमन डेका से आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के नेतृत्व में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा से जुड़े संतों ने सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि ये पदयात्रा नेपाल से प्रारंभ होकर लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बस्तर संभाग में विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं, जिससे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच सके। मंत्रालय में आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में भी आज आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करने गए थे, इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से बारिश और गरज चमक के दौरान खुले स्थानों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। दुर्ग पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम पर करीब 1,60,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को बीमा अधिकारी बताकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की राशि वापस दिलाने का झांसा देते थे और विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा कराकर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय समय पर सत्यापन कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कार्ड में संशोधन कार्य के लिए मात्र 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति तथा सहमति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने श्रमिक कार्ड की जानकारी

0: अपडेट कराएं। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सुखनंदन बंजारे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुखनंदन बंजारे के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। और कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत कल 4 जुलाई से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आइए सुनते हैं आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए के दूसरे और शेष भाग का प्रसारण।
2: हेलो, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए।
3: हेलो
2: जी, हाँ कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए, कौन बोल रहे हैं?
3: सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ। सर,
2: सतीश रघुवंशी?
3: जी सर।
2: अच्छा, छिंदवाड़ा से?
3: जी सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सर,
2: क्या करते हैं सतीश जी?
3: सर, मैं बिजली ऑफिस में सर, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ।
2: बिजली ऑफिस में ऑपरेटिंग का काम करते हैं, मतलब ऑफिस के अंदर का काम है आपका?
3: जी जी बिल्कुल सर, लाइट बंद चालू का सर।
2: अच्छा सतीश जी, अभी ये बारिश का मौसम है और बारिश में बिजली से बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को इस संबंध में?
3: सर, मैं श्रोताओं से यही बोलना चाहता हूँ कि सर, बारिश के दिनों में मतलब दूरी बना के रखें, क्योंकि की लाइन के नीचे न रहे, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना होती है और पशुओं को खम्भे से दूर बांधे। सर
2: जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने सतीश जी। और अब हम जानना चाहेंगे आपको किस तरह के गीत पसंद है, पुराने फिल्मों के, नए फिल्मों के, या किस कलाकार के सुनना चाहते हैं?
3: जी सर, मुझे तो पुराने गीत ही पसंद है सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
3: जी सर।
2: हेलो, कार्यक्रम है लीजिए फिर सुनिए। जी हाँ, नाम बताइए।
4: अश्विनी खमारी सर।
2: अश्विनी खमारी जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: पहाड़ के नीचे में स्थित है हमारा गाँव, सुंदर सा गाँव सर।
2: अच्छा, जुड्डा से बोल रहे हैं, क्या करते हैं?
4: खेती किसानी करते हैं सर।
2: तो अभी क्या स्थिति है आपके खेत में?
4: अभी धान बोरी 50% हो चुका है सर, और अभी बारिश थोड़ा ज्यादा हो गया तो बोते नहीं बन रहा है।
2: अच्छा, अश्विनी जी किस तरह के गीत पसंद करते हैं आप सुनना?
4: पुराने गीत सर।
2: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचौरा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, क्या करते हैं प्रेम सिंह जी?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या लगा है आपके खेत में?
1: जी अभी बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और जब सोयाबीन की फसल की कटाई हो जाएगी 2 से 3 महीने में, तो फिर गेहूँ और लहसुन की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पर।
0: अच्छा, कितनी जमीन है आपकी?
1: जी सर, मेरे पास में 50 बीघा जमीन है। हाँ जी, ट्रैक्टर भी है और मजदूर द्वारा खेतों में काम करते हैं और आकाशवाणी सुनते रहते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: जी आकाशवाणी से तो 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनता हूँ, जानकारी कार्यक्रम होते हैं
0: जी,
1: और साथ में मनोरंजन भी होता है और अच्छे से दोस्त भी मिलते हैं आकाशवाणी से हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सूचना शिक्षा और मनोरंजन हमारा उद्देश्य है प्रेम सिंह जी।
1: जी
0: तो बताइए।
1: बताएंगे सर, जैसे कि मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना
0: जी,
1: तो हमें हर राज्य के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुनने को मिलते हैं
0: जी, बहुत आसानी से कभी भी कहीं से भी और कहीं के भी कार्यक्रम हम सुन सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, इससे काफी श्रोताओं की संख्या फिर से बढ़ गई है आकाशवाणी सुनने की
0: जी। प्रेम सिंह जी, किस तरह के गीत सुनते हैं आप?
1: जी मुझे 2000 से अभी तक के गाने पसंद है।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
1: थैंक यू सो मच।
0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?

0: डी आर नारवानी हूँ, चक्रगढ़ कैंप से।
1: डी आर नारवानी जी, कैसे हैं नारवानी जी?
0: बहुत बढ़िया सर, आपसे बहुत रंग बात हो रही है
1: जी। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है नारवानी जी, हमारे पुराने श्रोता से बात करके। और अभी काम कैसा चल रहा है आपका नारवानी जी?
0: बहुत बड़े काम है सर, थोड़ा कम है अभी तो, जुलाई में ऐसे कपड़े की ग्राहकी कम होती है।
1: अच्छा
0: जी, जुलाई सितंबर में कपड़े बहुत ही कम बिकते हैं
1: जी।
0: तो जुलाई का महीना क्या है, स्कूलों का महीना होता है, तो सब माँ बाप बच्चों के कपड़े लेने में, कापी किताब लेने में उनका बजट खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो नए कपड़े लेने पड़ते।
1: फिर उधर दुर्गा पूजा दीपावली से फिर से बिक्री आप लोगों की बढ़ जाती होगी?
0: जी जी, दुर्गा पूजा दीपावली सबसे ज्यादा ग्राहक होते हैं शादी के मौसम में।
1: जी जी,
0: फरवरी मार्च अप्रैल मई जून
1: जी। नारवानी जी, किस तरह के गीत आपको ज्यादा पसंद हैं?
0: गीत सर 60, 70, 80, 90 के दशक के ज्यादा पसंद है।
1: और किस कलाकार के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको?
0: मुकेश है, मनाडे, मोहम्मद हुसैन, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण
1: जी,
0: बारह सुब्रमण्यम,
1: पुराने गानों के
0: गाना जो दिल को भा जाए, जिसका संगीत अच्छा हो।
1: जी जी जी,
0: बहुत अच्छा गाना है।
1: तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: अच्छा, तो मैं गुरु गोविंद मिश्रा, ये ओडिशा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा मिश्रा जी, झारसुगुड़ा से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ, ओडिशा झारसुगुड़ा से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: जी सर, हम पंडिती करते हैं। आज एक तो शादी है, तो शादी मैंने करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा, तो वहाँ से आपने हमको फोन किया है?
1: हाँ, ये अभी प्रोसेशन हो रहा है। तो
0: अच्छा,
1: मेरा क्या काम है, इसीलिए फोन लगाया।
0: बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी ये जान के कि आप इतना प्रेम करते हैं आकाशवाणी रायगढ़ से, और जब भी आपको आपको जब भी समय मिलता है, और अभी आप व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके हमको फोन कर रहे हैं। तो किस तरह के गाने आपको ज्यादा पसंद?

0: हमको ये भक्ति गाना जो कि मैंने जो भगवान का ही गाना होता है उसी का उसी तरह गाना, या मैंने जो मैंने आदमी को आगे बढ़ने के लिए या कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा जैसे कि वो आगे बढ़ सकता है, इस टाइप का गाना हमको पसंद है।
1: प्रेरणादायी गीत आपको ज्यादा पसंद है?
0: हाँ।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
2: जी सर, हम धेमाजी आसाम से बोल रहा हूँ, बिमल बसुमतारी।
1: बिमल
2: बसुमतारी है सर।
1: अच्छा, बिमल जी आसाम से बोल रहे हैं।
2: जी सर।
1: अच्छा, क्या करते हैं आसाम में?
2: जी सर, मेरा दुकान है, सिलाई का काम करता हूँ मैं सर।
1: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। और रेडियो सेट कहाँ पर लगा के रखे हैं आप, दुकान में ही?
2: जी सर, दुकान में हम मोबाइल से बॉक्स में कनेक्शन करके सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो आप अपने साथ साथ अपने कारीगरों को और अपने ग्राहकों को भी रेडियो सुनाते हैं?
2: जी जी सर।
1: तो आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
2: पहली बार आज फोन लगाया, आगे भी लगाया था सर, सुनते रहता हूँ बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम।
1: अच्छा,
2: बीच बीच में बहुत समझ है ना सर, बहुत प्रोग्राम लेता हूँ, बहुत सुनता हूँ दिन भर, ऐसे अच्छा लगता है सुन के, रेडियो का साथ जुड़ा रहे के।
1: कार्यक्रम आप बहुत पहले से सुन रहे हैं मगर फोन आज पहली बार लगाया आपने।
2: जी सर।
1: चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायगढ़ के फोन इन कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए। में किस तरह के गाने आपको पसंद हैं विमल जी, कि आपको नए गाने अच्छे लगते हैं या पुराने अच्छे लगते हैं, या किस कलाकार के ज्यादा अच्छे लगते हैं?
2: जी सर, हमको और ये उदित नारायण ये सब सुनने से ठीक है।
1: अच्छा, उदित नारायण जी के गाने?
2: जी सर।
1: अच्छा,
2: उदित नारायण आपके
1: ठीक है,
2: ये सर।
1: ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। और हम सुनाते हैं
2: जी सर, मेरा दोस्त लोग के लिए डिलीवर करना चाहता था सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी सर, हम लोग का रिश्ता थे, रेडियो रिश्ता थे, अम्बल बसुमतारी, फाइकन मुंडा, रमेश पत्र, दिल्ली से है धर्मवीर, राकेश है, कुरुण वर्मा है, तबियत प्रजापति है, गोल्डी है
1: जी,
2: प्रेम सिंह सुसोदिया है, बहुत सुनने वाला जितना है सब के लिए डिलीवर करना चाहता है सर, और आपको भी सर।
1: तो इतने सारे दोस्त आपके सुनते हैं रेडियो आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम?
2: जी सर।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है,
4: क्या है?

0: तो श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए। आज जिन श्रोताओं ने हमें फोन किया उनको धन्यवाद। और इसके साथ ही एक अनुरोध हम अपने सभी श्रोताओं से करना चाहेंगे कि आप हमें अगला फोन एक महीने के अंतराल पर ही लगाएं। और जिन श्रोताओं का फोन नहीं लगा वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि लीजिए फिर सुनिए की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को शाम 4 बजे से। फोन नंबर है 22 32 33 और एसटीडी कोड है 07762। फोन करने के लिए समय एक बार फिर से नोट कर लें, हर बुधवार को शाम 4 बजे से। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का, तकनीकी सहयोग बीएस धुर्वे का, कार्यक्रम का संचालन किया आपके दोस्त रमाशंकर शुक्ला ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। और अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आपके फोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम लीजिए के दूसरे और शेष भाग का प्रसारण। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 7:20 हुए, आइए सुनते हैं आप का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लइका सियान जवान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। देख संगवारी हो बड़ दिन बाद भेटा परे हन कहा और आप सबो जन के हमार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और संगवारी हो बरसात के महीना चालू हो गए कहा तो ये बरसात में भी देखा तो कौन कोती बहुत ज़्यादा बारिश होते और कौन कोती सूखा ही हवे तो कौन कोती बूता काम भरदरा गए हवे और कौन कोती अभी बूता में अभी शांत हवे कहा तो देखा संगवारी हो ऐसने में जोन कोती पानी गिरा थे वो अंग बहुत ज़्यादा पानी गिरा थे और जोन अंग नहीं गिरा थे नहीं गिरा थे तो ऐसने में जोन अंग पानी गिरा थे वो अंग हमार किसान संगवारी मन के बूता काम है बहुत ज़्यादा गझा गए हवे तो ऐसने में हमार संगवारी मल्ला अपन के सेहत के ध्यान रखते हुए बूता कामला करना है कहा समय समय में खाना पीना और थोड़े आराम भी जरूरी हवे संगवारी हो तो अपन के स्वास्थ्य ला ध्यान में रखते हुए अपन के बूता कामला करना है कहा तो देखा हमार खेती किसानी बार सबले ज़्यादा जरूरी होते पानी कहा जोन वर्षा जल है एकर दरकार बहुत ज़्यादा होते तो आज हमन एकरे से संबंधित ही हमार विषय हवे आज के बात के विषय हवे दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। देखा संगवारी हो जल है तो जीवन है ना जल ही बहुत ज़्यादा उपयोगी हवे। देखा हमन सबो जानथन कि पानी हर हमार जिंदगी के सबले बड़े और जरूरी आधार हवे चाहे घर के रोज के बूता काम हो या फिर खेती

खार के खेती किसानी बिना पानी के कछु भी काम ह संभव नहि हे संगवारी हो। ओकरे सेती हमला वर्षा जल ल संरक्षण करके रखना हे, ओला संरक्षित करके रखना हे। ऐसन म जो वर्षा जल हे ओला हमला पानी ल बचाना हे अउ हमर दैनिक और कृषि बूता ल कतका सरल और सुघर बना सकत हन, तो आवा एकर एला समझथन कि कैसे हमन वर्षा जल ला संरक्षण करके हमर जोन रोजमर्रा के काम हे ओला आसान बना सकथन और कृषि कार्य ला सरलता से कर सकथन। तो देखा खेती किसानी या फिर कृषि कार्य में सरलता देखबो तो हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते और हमर यहाँ के खेती हर ज़्यादातर मानसून यानी बरसात के भरोसा में ही रहते कहा। तो हमर जो खेती करथन वह बरसात के भरोसा में ही हमन करथन। अगर हमन बरसात के पानी ला सहेज के रखबो तो खेती में सबो प्रकार के हमला सुविधा होही। सबले पहली तो सूखा और अकाल ले हमन बच सकथन जब हमन वर्षा जल संरक्षण करबो तो। कभी कभी बरसात ह कतकी कतकी दिन तक नहीं हो संगवारी हो और कभी कभी रोज हो जाते। तो का होते कतका कतका दिन ले बरसात नहीं हो तो जो हमर फसल है वह सुखाए बर लगते। ऐसन में अगर हमन डबरी जोन ला हमन छोटा तालाब कहथन या फिर खेत के मेल ला ऊंचा करके पानी रोक के रखबो तो वो पानी हा संकट के समय फसल ला बचाए के काम है। और देखा ये तो है संगवारी हो वर्षा जल ला संरक्षित करबो तो एहर जो सूखा पड़ी वो समय एहर हमर काम ही कहा और हमन अकाल ले बच सकथन। ऐसने संगवारी हो रबी फसल बर पानी मिल जही। जब हम वर्षा जल संरक्षण करबो तो रबी फसल भी करथन तो ओकर बर भी पानी हर हमला मिल जही कहा। जैसे खरीफ धान के फसल के बाद जो बचे हुए पानी है ओकर ले हमन चना तिंवरा गेहूँ या फिर साग सब्जी यानी कि हमन रबी फसल में जो भी फसल लेथन ओकर बर ओहर आसानी ले हमन ओकर उपयोग कर सकथन। जेकर से हमर किसान भाई मन के कमाई हर बाढ़ जही संगवारी हो। यानी कि हमन दोनों फसल ला लेबो खरीफ और रबी तो हमर जो मुनाफा है वह ज़्यादा होही। ओकरे सेती संगवारी हो हमला जो वर्षा जल संरक्षण है ओला डबरी बना के या फिर मेड़ मला ऊंचा करके हमन ओला संरक्षित करके रखबो तो यार हमर उपयोग आही। ऐसने संगवारी हो भू जल स्तर में सुधार होते। जब खेत में पानी रुकते तो वह धीरे धीरे धरती के भीतर में रिसते यानी कि वह धीरे धीरे धरती के भीतर में जाए बर लगते। एकर से जो कुआँ है बोर है नरवा या नाला है एकर जल स्तर हर यानी वाटर लेवल हर बढ़ जाते जेकर से गर्मी के दिन में घलो सिंचाई बर पानी मिलत रहते संगवारी हो। यानी हमन वर्षा जल ला संरक्षित करके राखबो तो ये जो सब्बो पानी के स्रोत है ओमें वाटर लेवल है ओहर मतलब बढ़ जाही। ओकरे सेती हमला पानी ला वर्षा जल ला संरक्षित करके रखना है और संरक्षित करके रखबो तो एकर जब वाटर लेवल ह बढ़ जाही तो एकर उपयोग हमन गर्मी के दिन में कर सकथन। और आप मन जानते छव संगवारी हो गर्मी के दिन में कतका पानी के किल्लत रही थे लाइन लगावे लागते संगवारी हो। ओकरे सेती हमला अभी भी सचेत हो जाना है और वर्षा जल ला संरक्षित करके रखना है। ऐसने ही संगवारी हो घर के रोज के काम जोन हमन दिनचर्या है हमर दैनिक कार्य है ए में भी सुविधा होते हमन एला जब संरक्षित करके रखथन ता। देखा संगी हो घर में घलो पानी के कतका जरूरत रही थे एला हमन सबो जानथन कहा। पानी सहेज के रखबो तो घर के काम बूता घलो और सरल हो जाही। नवा और सुघर पानी के उपयोग देखा संगवारी हो वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि छत के पानी ला पाइप ले टंकी या गड्ढा में डालना एला कथन हमन छत के जो वाटर हार्वेस्टिंग है एला। तो एकर माध्यम से हमन बरसात के साफ पानी ला जमा कर सकथन और ये पानी हर कपड़ा धोए बर्तन मांजे और घर के साफ सफाई में बहुत काम आते। और गर्मी के दिन में भी

राहत मिलथे कहा। देखो हमर छत्तीसगढ़ में कतको जगह गर्मी में पानी के किल्लत हो जाते। अभी हमन बात करत रहन कहा, अगर हमन बरसात के पानी ला गड्ढा बना के धरती के भीतरी पहुँचाबो तो हमर जो मोहल्ला के हैंड पंप है या फिर कुआं है ओमन गर्मी में घलो सूखा नहीं मारे, मतलब गर्मी में घलो हमला पानी दही। तो ओकरे सेती हमला वर्षा के जल ला संरक्षित करना है संगवारी हो। और हमन जो भी पशुधन गौ माता राखे हन ओमन बर भी पानी मिल जाही। हमर छत्तीसगढ़ में जो गाय बैल है गरु गाय है ए मन के घलो बहुत ही महत्व है संगवारी हो। हमन सहजे हुए पानी हर गर्मी के दिन में हमर ये जो पशु राखे हन ए मन के पिए और ओ मन ला नहलाए के भी काम आते। तो देखा संगवारी हो, खेत के पानी खेत में और घर के पानी घर में। अगर हमन ये जो नारा है एला अपना के पानी ला बहाए ले रोकबो तो हमर छत्तीसगढ़ और भी हरी भरी हो जाही, समृद्ध हो जाही। हमर किसान संगवारी मन के जो आय है ओहर भी अच्छा से बढ़ जाही। तो संगवारी हो हमला ये सबो काम ला करना है और जो वर्षा जल है ओला संरक्षित करके रखना है। तो संगवारी हो ये तो रही हमार आज के बात के विषय, दैनिक और कृषि कार्यों में सरलता का आधार वर्षा जल संरक्षण। और देखा संगवारी हो बेला हो गिसना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो आप मन कापी पेन निकालो और आज के प्रश्न ला लिखो। आज के प्रश्न हवे संगवारी हो, धान उत्पादन के श्री विधि ला अवका नाम ले जाना जाते। एक बार और सुन लेवा प्रश्न ला, धान उत्पादन के श्री विधि ला अव का नाम ले जाना जाते। तो एकर उत्तर आप मन ला आगे मिल जाही संगवारी हो, हमन एकर बारे में आगे चर्चा करबो। तो आप मन हमर कार्यक्रम में पूरा अंत तक बने रहा तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिल जाही। और आप मन एक उत्तर लिख के जरूर भेजिया, हमन ला आप मन के उत्तर के अगोरा रहते कहा। और आज हवे दिन शुक्रवार संगवारी हो, और आज आप मन जानत हवा हमर विशेष क्रम रहते हमर लोकगीत के क्रम, जेमा आप मन अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश ईमेल के माध्यम से और पत्र के माध्यम से लिख के भेजे रहता एला हमन आप मन ला सुनाथन और सुनथन भी कहा। तो बेरा होगी संगवारी हो हमर लोकगीत के क्रम को ती जाए के। तो आवा

संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हवा आप मन के संगी सुमित्रा पटेल, और संगवारी हो आप मन के मन पसंद कार्यक्रम हमर लोकगीत जेन हर चिट्ठी और ईमेल ले आधारित हवे। तो आज के ये क्रम मा संगवारी हो आप मन ला आप मन के मन पसंद गीत ला सुनथन और सुनाथन। तो लेवा सुना आप मन के मन पसंद ये सुघर लोकगीत ला, मजा आही ऐसो के आषाढ़ में, और एला गाय हमें कृष्ण कुमार पाटिल। और ये गीत ला पसंद करैया हमर संगवारी मन हमें जोन मन ईमेल भेजे हमें, कातल बोर्ड ले भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, ग्राम कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पुरेंद्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, डोंगरगांव ले हमें राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये, कोहका भिलाई ले हमें उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला ले हमें अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी ओसिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, दतरंगी ले हमें भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आवा संगवारी हो आप सबो के पसंद के ये सुघर लोकगीत ला सुनबो।

तो संगवारी हो, लोकगीत के क्रम जारी है कहा। और अगला ईमेल आए हवे माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी ले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेगलाल पटेल, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलई नगर ले हवे अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, हाटोद बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल, ग्राम पुतकी कला कवर्धा ले हमें राधे श्याम पांडे, वीड़ा पांडे, विनय शंकर पांडे, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ले हमें दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी ले हमें कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, धमनी राजीम ले हमें समयलाल धीवर, मुन्नी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुड़ाल धीवर, युवांश धीवर, गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद ले हमें जितेंद्र दास, मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोत

0: भाई मानिकपुरी, डगेसाराम साहू, नूतन साहू और गौरव साहू, अलका जानवी साहू। और एकरे संगे संग मोर हाथ में चिट्ठी भी हवे संगवारी हो, एहर हवे छत्तीसगढ़ बेमेतराले श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटैले हवे नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ये सबो संगवारी मन के गीत पसंद हवे संगवारी तोर रापा कुदारी। और ये गीत ला गाए हमें खुशी दास मानिकपुरी आओ मन के साथी मन। तो आवा संगवारी हो आप सबो के पसंद किए सुघर अखन के लोक गीत ला सुनबो आओ सुनाबो।
1: संगवारी तोर रापा कुदारी, संगवारी तोर रा...

तो संगवारी हो लोकगीत के अगला क्रम में गीत हवे आगे रे आषाढ़ और संगवारी हो ये गीत ला पसंद करो या संगवारी मन हवे हटरी चौक बिलाईगढ़ ले खीक राम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन और रेनू देवांगन ग्राम फुलझर घटा रानी जिला गरिया बंदले हवे योगेश्वर साहू डुमेश

वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू और हर्षिता साहू। खमरिया बिलासपुर ले हमें साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हमें हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ ले विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष साहू, कुमकुम साहू और योगेश्वरी साहू। लक्षणपुर ले हमें टेकराम यदु, विकास यदु, हेमलता यदु, गीतेश्वरी यदु। कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ ले हमें अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा साहू, खुशान साहू, निशान साहू। कन्यावाड़ा ले हमें संतोष सोरी, रेवती सोरी, लक्ष्मण सोरी, देवेंद्र सोनवानी, लक्ष्मी सोनवानी, गीतिका गुड़िया गिन्नी और पीहू। और यही गीत ला पसंद करे या और भी संगवारी हमें जोन मन चिट्ठी के माध्यम से अपन के फरमाइश लिख भेजे हमें एमन हमें श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव ले हमें मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। तो आवा संगवारी हो आप सबों के पसंद के ये लोक गीत ला सुन लेथन।

तो संगवारी हो, लोकगीत के क्रम जारी है कहा, और अगला गीत झिमिर झिमिर पानी गिरे, और ये गीत में स्वर दे हमें भीखम धर्माकर। और ये गीत ला पसंद करैया हमार संगवारी मन हमें जोन मन ईमेल के माध्यम से अपन के फरमाइश लिख भेजीन है, एमन हमें दतरेंगी भाटा पारा ले हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खटसे और विनोद खटसे, ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, और यही ले हमें गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, अड़ार नान घाट ले माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, बाग बहारा भदरसी ले हमें पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, छत्तीसगढ़ सहसपुर ले हमें छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, राम किशन साहू, दुली चंद साहू, सती बाई साहू, सत्यम चिंद्रीबन नवागांव बालोद ले हमें चंद्रभान हिरवानी, कुमारी हिरवानी, फुलेंद्र हिरवानी और नेमेंद्र हिरवानी, मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ ले हमें गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, बिहारी पटेल, लक्ष्मी बरेट, लक्ष्मण बादवानी और गेंदू भाई। और यही गीत ला पसंद करैया संगवारी मन हमें जोन मन चिट्ठी भी भेजे हमें, एमन हमें अरमरी खुर्द जिला दुर्ग ले हमें चूरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, विवेक कुमार वार्डे, नेहा वार्डे, भाटापारा ले हमें दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, दतरंगी ले हमें भागवत वर्मा, लेवई ले हमें गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर ले विश्वनाथ साहू, चार डोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, गौशाला पारा रायगढ़ ले विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा यशु और अंशु गुप्ता, श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले हमें लक्ष्मण बादवानी, श्रीमती विमला बादवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बादवानी, और यहीं ले हमें कन्हैया लाल तीर्थानी, नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेम लाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू, मोहन पारा अकलतरा ले हमें अभिनव साहू, अभिषेक साहू और उमा देवी साहू। तो आवा संगवारी हो, आप सबों के पसंद के ये सुग्घर लोकगीत ला सुनथन।

संगवारी हो अगला लोकगीत के क्रम हवे और एमे गीत हवे रज रजा के पानी गिर जारे और ये गीत ला गाय हवे तोनर चंद्राकर और अनिता साहू और ये गीत ला पसंद करैया संगवारी मन हवे भाई रामचंद्र जी देवांगन श्रीमान घासी मामा सलाम ग्राम जुड़वा चौक सरंग पाले हवे एमन कुमारी सुनैना पिंकी गीता यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती भगवत देवांगन पदुम देवांगन और समस्त देवांगन कुटुम परिवार और यही गीतला पसंद करैया और भी संगवारी हमें राजीव गांधी नगर रायगढ़ छत्तीसगढ़ ले मनोज कुमार यादव सोनम विशाल ज्योति गोपी राधी रामलाल यादव राजो और फूलबाई ग्राम बंगला मटिया बालोद ले हमें शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा ले हमें चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल भूर सुदास छत्तीसगढ़ ले हमें संतोषी भगवानी नेहा चंद्र प्रकाश चिराग और गजेंद्र सेन ग्राम खट्टी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ ले हमें सुभाष शर्मा छाया शर्मा मोती तिवारी हेमलता तिवारी देवरी भाटा परा ले हमें गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री बाजार पारा बेमेतरा ले हमें भाई भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार भिलाई ले हमें सुशील जैन कल्पना जैन श्रेया जैन सौरभ जैन सौर्य जैन और शुभम जैन छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी ले हमें द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा लेवई छत्तीसगढ़ ले हमें गुलाब दास मानिकपुरी राजा दास मानिकपुरी रानी मानिकपुरी ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले हमें राम दुलारी प्रजापति राम शरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति शशिकांता प्रजापति दतरंगी ले हमें विश्राम यदु पार्वती यदु प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु और लालपुर ले हमें लुकेश यदु और समीर यदु हिच्छा महासमुंद ले हमें अदाला दास वैष्णव मानस शांति वैष्णव रीचा गायत्री वैष्णव भीषम दास मानिकपुरी ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग ले हमें पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर तो आवा संगवारी हो आप सबों के पसंद के ये सुख घर लोक गीतला सुनथन।

0: तो संगवारी हो, हमन अभी सुनत रहें आप सबों के मन पसंद सुघर सुघर लोकगीत ला। अब ये लोकगीत के क्रम ले मोर जाए के वेला हो गए संगवारी हो, तो मोला देवा विदा आप सबो संगी संगवारी मल्ला, राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो, अभी हमन सुने आप सबों के पसंद के सुघर सुघर लोकगीत ला, बढ़िया लागे हो ही संगवारी हो, कैसे लागिस आप मन लिख के जरूर भेजिया। अब बेरा हो गिस ने संगवारी हो भेंटवार्ता कोती जाए के, तो मैं गेर हैं ग्राम अमेरी विकास खंड बरम केला के कृषक मनमोहन चौधरी से धान की बतर बोनी की तकनीक एवं प्रबंधन विषय पर हो रही मोर भेंटवार्ता, तो आवा एला सुन ले। संगवारी हो, राम राम जय जोहार। तो संगवारी हो आप सबो जन के हमर कार्यक्रम में स्वागत है, और हमन भेंटवार्ता करथन कहे तो हमर भेंटवार्ता के क्रम में संगवारी हो मैं भेंट करत हूँ एक किसान संगवारी ले। तो सबले पहली चला जानबो मन के परिचय, तो सबले पहली किसान संगवारी आप मन ला मोर कोती ले राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: हाँ, तो आप मन के परिचय बताहा।
1: मनमोहन चौधरी।
0: अच्छा, आप मन के नाम है।
1: हाँ,
0: आप मन कौन गाँव के?
1: अमेरी।
0: अमेरी, तो आप मन धान के खेती करे हा?
1: हाँ, धान की खेती 4 एकड़ खुर्रा लगाए हम।
0: अच्छा, खुर्रा लगा डाला ना।
1: हाँ।
0: तो खुर्रा लगा के पहली जैसे खेत की तैयारी करना पड़ते कहा।
1: हाँ।
0: तो आप मन कैसे करे हा?
1: पहली तैयारी कर ले रहे हैं, जोताई कर डाल रहे हैं।
0: अच्छा, जोताई कर रहा ट्रैक्टर में।
1: हाँ।
0: मेड़ वो वगैरह है, पार है, ओला बढ़िया ठिन्ना कर डाले हा।
1: ठिन्ना कर डाले हम डीसीबी में।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, तो ओला जुताई करके अभी बो है कहा।
1: हाँ।
0: ओकर बाद वह कतका दिन में जाम थे?
1: और धान सही बीजा रही।
0: हाँ।
1: वो 8 दिन में जाम जाते।
0: अच्छा अच्छा, बीजा रहे ले 8 दिन में जाम जाते कहा।
1: हाँ।
0: हाँ, तो आप मन बीजा कहाँ ले आम था?
1: सोसाइटी ले आम था।
0: अच्छा, सोसाइटी ले आम था।
1: हाँ।
0: तो जैसे 8-15 दिन में हर जाम जाते कहा था, 8 दिन में।
1: हाँ।
0: तो ओकर बाद जामे के बाद हमें क्या करना पड़ते?
1: बन कचरा पर दवाई मारना पड़ते।
0: अच्छा, बन कचरा पर दवाई मार था। अच्छा। हाँ, ओकर बाद में बीच बीच में पानी पलो लगते की?
1: हाँ, पानी सुविधा रहे बड़े पानी। अच्छा, रहे तो
0: जो बरसात के पानी है में हो जाते का।
1: हाँ।
0: हाँ, जैसे पानी नहीं गिरे ले लगते।
1: हाँ।
0: हाँ। और जैसे राखड़ खातु कैसे डाल था आप?
1: राखड़ खातु धान अत्यधिक भेड़ हो जा रही।
0: हाँ।
1: हम डाल था।
0: अच्छा, का खाद डाल था?
1: डीएपी।
0: और यूरिया डाल था की?
1: यूरिया बाद में डाल था।
0: अच्छा अच्छा। और सिंचाई करे तो नहीं लगे कहा? बरसात के पानी में हो जाते का?
1: बरसात के पानी में हो जाते, तालाब है हम।
0: अच्छा, तो जैसे आप मन खाद राखड़ खतु डाल था, तो ये खाद ला मन कहाँ ले आन था?
1: सोसाइटी ले।
0: सोसाइटी ले।
1: हाँ।
0: सोसाइटी ले मिल जाते?
1: मिल जाते, कुछ कमी पैसे हो जाते बेचक ले आन था।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे खेती करे बा बहुत ज्यादा पैसा के दरकार पड़ते कहा।
1: हाँ।
0: जैसे बीजा लाने बर, जोताई करे बर, है ना, राखड़ खातु लाने बर, तो ये पैसा जैसे कहाँ ले मतलब आप मन पाथा?
1: सोसाइटी के लिए मिलते हम ला।
0: अच्छा, केसीसी ले।
1: हाँ, केसीसी।
0: हाँ, इसमें बहुत कम ब्याज मिलते या फिर ना के बराबर रहते?
1: हाँ।
0: जैसे ही धान बेचता होकर बाद वह कट जाते?
1: कट जाते। हाँ।
0: अच्छा अच्छा। हाँ।
1: ब्याज नहीं लगे में।
0: हाँ, एकर अलावा आप मन ला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ले पैसा मिलते?
1: हाँ, मिलते।
0: अच्छा, हर कतका दिन में मिलते?
1: 3-4 महीना मिल जाते से।
0: अच्छा, 4-4 महीना में मिल जाते। तो एकर उपयोग आप मन ये में करदार था, है ना?
1: हाँ।
0: यह बहुत ही अच्छा योजना है, एकर से आप मन ला बहुत बढ़िया लाभ मिला थे कहा।
1: हाँ।
0: हाँ, तो दादा आप मन के जो पैसा मिलते हैं वह बहुत ही अच्छा है ना? ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, भारत सरकार हर मतलब चलाते यानी कि ओकर द्वारा पैसा दिए जाते है ना? हाँ, तो यह बहुत ही अच्छा योजना है, में एकर बर ये दिए जाते काबर कि यार हमार किसान संगवारी मन बर खेती किसानी बर काम आए है ना?
1: हाँ।
0: कुछ भी जरूरत पड़े ले मन एकर उपयोग कर सका थे। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा योजना है, एकर आप मन लाभ उठा था। एकर बाद जैसे धान है जाम जाते राखड़ खातु दे था, तो है कतका दिन में हो जाते धान है?
1: 3 महीना।
0: अच्छा, 3 महीना में हो जाते?
1: 3-4 महीना में हो जाते।
0: अच्छा, 3-4 महीना में हो जाते। तो आप मन कहाँ में बेचता?
1: मंडी में।
0: मंडी में।
1: हाँ।
0: अच्छा, एकर आप मन लाभ मिला थे का, है ना?
1: हाँ, मिला।
0: तो कतका रेट में बेचता?
1: 3100।
2: 3100 क्विंटल। बहुत अच्छा मिला थे, है ना। अच्छा तो धान के खेती में आप मल्ला लाभ मिला थे कहा?
1: हाँ, मिला था, मिला था।
2: अच्छा बहुत अच्छा लाभ मिलते, लेकिन थोड़े से मेहनत ज्यादा लागते।
1: हाँ, मेहनत ज्यादा लागते।
2: हाँ तो एक बार आप मन एक अलावा धान के अलावा का खेती करे हा?
1: नहीं, कुछ यही लगा था, ढुलू कंदा लगा था।
2: अच्छा ढुलू कंदा लगा था।
1: हाँ, वो हल्दी लगा था।
2: अच्छा सब बोला लगातार था, थोड़े थोड़े
1: थोड़े थोड़े सब।
2: अच्छा हाँ, अच्छा तो आप मन को चाहिए हरदी ढुलू कांदा सब लगातार था, बढ़िया बात है ना। हर एमे कम पानी भी लगते कहा, और कम समय में भी हो जाते। तो कम समय में हो जाते, ओकर बाद आप मन उका लगा था?
1: ओकर बाद सरसों लगा दे था।
2: हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप मन ओकर बाद सरसों लगातार था, है ना। मतलब आप मन के खेत खाली नहीं रहे, कछु न कछु फसल लगात रहता। तो आप मन कभू फसल बीमा करवाए है?
1: फसल बीमा करता हूँ।
2: अच्छा करवा था, तो एक लाभ मिलते आप मल्ला?
1: हाँ
2: हाँ, ये तो बहुत अच्छा है कहा। फसल बीमा जरूर करवाना है, या जैसे हानि हो जाते कछु भी प्रकार से, जैसे सूखा पड़ जाते या बाढ़ आ जाते, तो एकर से जो भी पैसा है मिल जाते, है ना।
1: मिल जाते हैं। हाँ।
2: अच्छा तो हानि के भरपाई हो जाते आप मन के, है ना।
1: हाँ,
2: हाँ तो बढ़िया बात है, आप मन सबो प्रकार के फसल लगा था, बढ़िया आमदनी कमा था कहा। तो संगवारी आप मन बहुत ही अच्छा जानकारी दे था, और बढ़िया बढ़िया फसल भी लगा था। तो हमारे और भी जोन रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी है, उमन का कहना चाहता?
1: अहुमन लगाए, आमदनी कमाए।
2: अच्छा हाँ, तो अहुमन बढ़िया सबो प्रकार के फसल लगाए और आमदनी कमाए कहा था।
1: हाँ।
2: तो आप मन के संदेश बहुत ही अच्छा है संगवारी, और इतनी अच्छा जानकारी दे है, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
0: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुने भेंटवार्ता कहा। अब हमार आज के नसीहत कोती जाबो, तो आज के नसीहत के विषय हवे पशुओं की सही उपयोगिता के लिए टीकाकरण। तो देखा संगवारी हो, पशु मन ला बीमारी ले बचाए बर और ओमन के सही उपयोगिता, यानी कि ओमन अच्छा से दूध दे, खेती किसानी और बोझा ढोए बर काम आए, यानी कि ओमन के जो हमार दरकार है, ओमन के सही उपयोगिता है, ओकर बर हमला ओमन ला समय समय में टीकाकरण यानी कि टीका लगवाना बहुत ही जरूरी है। अगर पशु मन तंदुरुस्त रही संगवारी हो, तभी तो ओमन के सही फायदा हमला मिलही। तो ओकरे सेती हमला ओमन के टीकाकरण सही समय में करवाना है। तो हमार पशु मला कई प्रकार के बीमारी हो जाते, तो एमे कुछ बीमारी हमन अभी चर्चा करबो। तो ए बीमारी मन ले बचाए बर ओमन ला हमला टीकाकरण करवाना है। सबले पहली तो है खुरहा और चपका बीमारी, जो ला हमन FMD कथन। ये बीमारी में एमे पशु मन के जो खुर है यानी गोर है, गोड़ है और मुँह मा छाला पड़ जाते खुरा मा, जेकर से ओमन चर और चल नहीं पाए, यानी कि मुँह में भी छाला पड़ जाते, तो ओमन खा नहीं पाए, चर नहीं पाए, और जो गोड़ में खुर में घाव टाइप हो जाते, तो ओमन चल भी नहीं पाए। तो एकर से का होते, जो दूध देवैया गाय भैंस है, ओमन के दूध एकदम से कम हो जाते। तो एमन के टीकाकरण के समय हवे ये बीमारी के। बछरू मन ला 4 महीना के उम्र में पहली टीका लगते, ओकर बाद हर 6-6 महीना में, यानी कि साल में 2 बार मल्ला टीका जरूर लगवाना चाहिए। या फिर हमन एकर बारे में नहीं जाना थन, तो हमला जो पशु डॉक्टर है ओमन से हमला संपर्क करना है और टीका ला लगवाना है। ऐसे ही गलघोटू है संगवारी हो, यह बीमारी बरसात में ज़्यादा फैलते और पशु के गला में सूजन आ जाते, सांस ले में तकलीफ होते और घरघराहट के आवाज़ आते, एमा पशु मन के जान भी गलो जा सकते है संगवारी हो। तो हमला पशु मन के ऊपर भी हमला ध्यान रखना है, ओमन के स्वास्थ्य के ऊपर देख रेख करना है। और एकर टीकाकरण के समय हवे बरसात शुरू होए के पहली, यानी कि मई जून के महीना में साल में 1 बार ये टीका ला लगवाना जरूरी हवे।

आऊ ऐसने ही संगवारी हो एक टंगिया या फिर लंगड़ी बुखार कथन ये बीमारी में एमे पशु मन के जो जांग है ओमा भारी सूजा न जाते ओमन लंगड़ा के चलते आऊ छुए मा चुरचुर के आवाज़ आते आऊ एकर टीकाकरण के समय हवे एला भी बरसात के पहली मई जून मा साल में एक बार लगवाना चाहिए। ऐसने ही संगवारी हो थनैला बीमारी है एला तो आप मन जानते छवा। हालांकि ये जो थनैला है एकर बर आम टीका नहीं हवे पर दूध दुहे के जो सही तरीका है और साफ सफाई रख के एला रोके जा सकत है। यानी कि अमला हाथ ला साफ धो करके ओकर थन ला अच्छा से सफाई करके ओकर दूध ला निकालना है। यानी कि एमे साफ सफाई के विशेष ध्यान रखना है। एमे थन हा का होते खराब हो जाते और दूध आना बंद हो जाते। एकर टीकाकरण के समय हमला ध्यान रखना है कि बीमार पशु ला टीका नहीं लगवाना है। जब ओमन स्वस्थ रहे यानी अच्छा रहे तभी हमला टीका लगवाना है। और बछरु मन ला 4 महीना के उम्र के बाद ही टीका लगवाए के शुरू करना चाहिए। तो ये तो ही संगवारी हो हमन पशु मल्ला टीकाकरण करवाना है उनके टीकाकरण सही समय में लगवाना है उनके सही उपयोगिता पर। अब संगवारी हो आज के टिप के विषय हवे धान उत्पादन की श्री विधि ज़्यादा उत्पादन का आधार। तो संगवारी हो धान उत्पादन के श्री विधि जोन ला हमन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी कहथन। यानी कि यह कम पानी कम बीज और कम लागत में अधिक पैदावार दे वाला एक ठन बेहतरीन और वैज्ञानिक तकनीक हवे। एला हमन सघन धान प्रणाली भी कह सकथन या फिर एला कहा जाते। और पारंपरिक विधि के तुलना में ये विधि ले धान के खेती ले उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाते संगवारी हो। तो श्री विधि के जो विशेषता है यानी कि इसमें कम बीज के दरकार पड़ते। पारंपरिक विधि में जहां संगवारी हो प्रति एकड़ लगभग 15 ले 20 किलोग्राम बीज लगते वहीं श्री विधि में मात्र 2 ले 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज के दरकार पड़ते। इसमें कम पानी के खपत भी होते। इसमें खेत ला हमेशा पानी ले भर कर रखे के जरूरत नहीं पड़े। केवल माटी में नमी यानी कि माटी ला कीचड़ जैसे रखना है और एकर ले का होते 30 ले 40% पानी के बचत होते। यानी कि हमन दूसर विधि से खेती करथन तो खेत में पानी ला हमेशा भर के रखे रहना पड़ते लेकिन श्री विधि में ऐसे नहीं पड़े। कम उम्र के पौधा के में रोपाई किया जाते। इसमें बहुत ही कम उम्र के पौधा है ओला लगाया जाते जेकर ले जो कल्ला है वह अधिक फूटते संगवारी हो। और पौधा ला पास पास लगाए के बजाय हमला निश्चित दूरी में लगाना है ताकि ओला पर्याप्त हवा धूप और पोषक तत्व मिल सके। और ये जो श्री विधि है इसमें पौधा ला कतार से लाइन से लगाए जाते। और एकर जो नर्सरी है थरहा है एकर प्रबंधन कैसे करना है तो जो नर्सरी में 1 एकड़ के रोपाई व लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करना पर्याप्त होते। ओकर बाद बेड तैयार करना रहते बीज उपचार फिर ये सब वो काम ला करना रहते कहा। तो ये तो है संगवारी हो धान उत्पादन के श्री विधि एकल ले बहुत अच्छा आमदनी मिलते। जो हमन दूसर विधि से खेती करथन जो पारंपरिक विधि है ओकर से इमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलते। तो आप मन भी ये श्री विधि ला अपनावा यह ज़्यादा उत्पादन के आधार हवे। ऐसने ही संगवारी हो और भी चर्चा के विषय हवे जीवन का आधार वन संरक्षण अपनाएं। तो देखा संगवारी हो वन यानी कि जंगल हर हमारे जिंदगी के वो आधार है जेकर बिना हमन सांस घलो नहीं ले सकन। और हमार जो धरती है ओला प्रकृति हर ही आशीर्वाद ऐसे दिसे कि हमार राज्य के चारों ओर जो हरियर हरियर जंगल ले सजे है कहा हमार राज्य हर। लेकिन आज के समय में जंगल मल्ला बचाना अब्बड़ जरूरी है। तो संगवारी हो चर्चा तो करत रहो तो आवाज़ सुन लेबो एक ठन।

0: इसला
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो इसने ही संगवारी हो, और भी चर्चा के विषय है, वज्रपात और आकाशीय बिजली से बचाव आवश्यक। तो संगवारी हो, आप मन तो जानते छवा, बरसात के दिन चलत है, और बरसात के दिन में जो आकाशीय बिजली गिरना एक ठन बड़खा समस्या बन जाते कहा, जेकर से जो मनखे है और मवेशी है एमन के जान ला हमला खतरा रहते। तो ये खतरनाक आपदा ले बचे बर हमन कुछ उपाय है एला बता थन आप मन ला। जब आप घर के भीतर यानी कि अंदर में रह, तब का करना चाहिए, जब तो हम जब बिजली चमकत है तो उस समय बिजली के जो सामान है ओकर ले दूर रहना है। घर के टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और कूलर जैसन इलेक्ट्रॉनिक सामान मन के प्लग ला बोर्ड ले हमला निकाल देना है। फोन के जो इस्तेमाल है ओला कम करना है। तार वाला फोन जो ला हमन लैंडलाइन कथन, ये फोन के उपयोग हमला बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल के उपयोग हमन कर सकथन, बस ओला चार्जिंग में लगा के मत रखो। जब चढ़कत है, बादल गरजत है, वो समय ये सब सावधानी ला अपनाना है। पानी ले हमला दूर रहना है। बिजली चमकत खानी नहाए बर और हाथ मुंह धोए या फिर बर्तन मांजे ले हमला बचना चाहिए। और संगवारी हो, जब बिजली चढ़कत है तो जो खिड़की दरवाजा है ओला बंद रखना है। ये सब उपाय ला हमला अपनाना है। तो संगवारी हो, मोर जाए के बेला हो थे कहा, तो आप सबो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुने थे किसान भाई का कार्यक्रम चौपाल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में सुनील जोगी के लिखे इस गीत को। संगीत पंकज उदास का है।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा।
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: अभी आप सुने थे गैर फिल्मी गीतों कार्यक्रम FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए पहले हम आपको सुनाते हैं अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेरी कसम का ये गीत। आम बच्ची के लिखे बोलों को संगीत दिया है RD बर्मन ने।

आइए सुनते हैं, आपको पहले सुनवाते हैं फिल्म वतन के रखवाले का गीत, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। नक्श मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

20 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: त्रिदेव फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: India's position on the Indus Waters Treaty.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
2: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार

0: साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह

0: कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं कैफी आज़मी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है हीर रांझा।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: जाओ भी।
0: नहीं
1: छोड़ो ना,
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं कैफ भोपाली, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद, फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं परवेज़ शमसी, धुन है सी रामचंद्र की, फिल्म का नाम है नौशेरवाने आदिल।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे, न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1969 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चुनाव सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: ये रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था और आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है। वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: पहले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1971 में फतेह पूर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुँह फट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

वेब भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए कुछ खूबसूरत गीतों और गजलों को। संगीत डॉक्टर अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का।

0: सभी श्रोताओं को आकाशवाणी रायगढ़ की नई सौगात। अब हमसे जुड़ना हुआ और भी आसान। अब पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, लोकरंजनी और क्रम पत्र मिला के लिए आप ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप मेल भेजते हैं उस कार्यक्रम का नाम सब्जेक्ट में लिखना आवश्यक है। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ,

0: प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला,
2: हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संडली।

उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई कुछ खूबसूरत गीत और गज़लों को भी आपने सुना कार्यक्रम विविध संगीत में। इस गज़ल के साथ ही विविध संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने को हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा। दोस्तों, आज किशोर स्वर्गीय किशोर कुमार के पुत्र अमित कुमार का जन्मदिन है, तो आइए करते हैं शुरुआत उनके गाए इस गीत के साथ। फिल्म तेरी कसम से ये गीत है, अनवक्षी का लिखा और आर डी बर्मन के द्वारा संगीतबद्ध।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म वक्त की आवाज़ का एक गीत। इंदिवर के लिखे बोलों को संगीत दिया था बप्पी लहरी ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882

0: में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं जैसे तिलक वगैरह जो हैं वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाया फिल्म भीगी पलकें का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत पंकज उधास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म थानेदार से। अनजान के लिए बोले संगीत पप्पी लहरी का है।

0: भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।